0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Ek aur laddu le lo.
3: Thodi aur biryani.
2: Are America jaake thodi milega.
4: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए।
5: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स। दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
6: हुजूर, आपको चुनना होगा हम या ये बिरयानी।
7: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
6: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
7: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
8: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
1: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
8: Barista House, richness of biryani bliss.
9: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
1: एलविंग वालो, ध्यान से सुनो, ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, हिंट है। Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
10: ये लास्ट दिवाली पहना था, ये नेहा की शादी में। इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है।
11: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
12: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके।
10: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
12: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ। तथास्तु।
1: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स, ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को। इंडियन अटायर, फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन।
13: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करें।
14: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
13: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
13: सच में सब संभालेंगे?
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
15: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.
16: Nation ka fun station, Fun Asia Radio. Bye now.

इवनिंग एंड वेलकम बैक दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यू आर लिसनिंग टू द फनेशिया नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग नॉन स्टॉप बॉलीवुड एंटरटेनमेंट हियर ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो एंड ऑल्सो ऑन 104.1 एफएम रेडियो कैरवान, जहां पर मिलती है आपको मोर वैरायटी, मोर चॉइसेस, मोर फन ओनली अंडर वन नेटवर्क विच इज फनेशियास नेटवर्क। और दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर की साथी आपकी अपनी अपूर्वा। एवरी संडे की शाम 6 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ, जुड़े रहते हैं आप भी हमारे साथ हमारी फोन लाइंस के जरिए 9722355555 के जरिए और हमारी बिग फैन टीवी ऐप के जरिए। तो दोस्तों, आज के शो में चल रहा है हमारा कार्डियो सेशन और कार्डियो सेशन चलते चलते अभी 1 घंटे के ऊपर भी होने वाला है, क्योंकि आप सभी के रिक्वेस्ट प्ले करते करते इतना टाइम हो चला है कि मुझे और टाइम ये शो एक्सटेंड करना पड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थॉट कि पहले चलो भाई 1 घंटे के शो में हम कार्डियो करेंगे और उसके अगले घंटे के शो में मैं कुछ आपके लिए अलग सा कुछ लेकर आई थी वो करेंगे, बट आप सबकी रिक्वेस्ट ऐसी आ गई है कि यहाँ पर प्ले किए बिना तो वो हो ही नहीं सकता, सो आई विल नीड एक्स्ट्रा टाइम। सो आई डिसाइडेड कि पूरे के पूरे 2 घंटे का शो आज हम कार्डियो ही कर लेते हैं। कार्डियो का मतलब ये होता है दोस्तों, एक ही मूवी का फास्ट पेस गाना और उसी मूवी का स्लो पेस गाना, क्योंकि फास्ट पेस गाना सुनते सुनते हमारी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, हमें डांस करने की इच्छा होती है, तो फिर वो दिल की बड़ी धड़कनें तेज होने के बाद उनको स्लो करना भी जरूरी है, तो उसी मूवी का हम स्लो पेस गाना भी सुन लेते हैं, सो दैट योर हार्ट बीट्स बिकम नॉर्मल, दे बिकम स्टेडी। सो ऐसा रहता है हमारा कार्डियो का सेशन। विद दैट, अगर आपको किसी मूवी का फास्ट पेस और स्लो पेस गाना सुनने की इच्छा, आकांक्षा या मनोकामना है, आप मुझे स्टूडियो के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। द नंबर टू कॉल द स्टूडियो इज 9722355555। विद दैट आपको लेकर चलती हूँ फास्ट एंड स्लो पेस गाने की कॉम्बिनेशन की तरफ। इस गानों की रिक्वेस्ट आई है महामित साहब की तरफ से एंड द सॉन्ग्स आर टेकन फ्रॉम द मूवी हम दिल दे चुके सनम।

नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी, समीर चाह रहा है। पापा नहीं माने, वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। इतनी इजाजत दी है कि तुम उसे जाते वक्त सिर्फ एक नजर देख सको। उठो नंदिनी, उठो। समीर हमेशा के लिए जा रहा है, जाकर देखा उसे, फिर शायद जिंदगी में तुम उसे कभी नहीं देख पाओगी। जाओ नंदिनी, जाओ।

हम दिल दे चुके सनम मूवी से दोस्तों आप फास्ट पेस और स्लो पेस गाना सुन रहे थे। इसके बाद के गाने भी आपको सुनवाऊंगी, बट इससे पहले आपको बता दूं दैट नो इंश्योरेंस और पैशन हेल्थ आउट ऑफ नेटवर्क, नो वरीज, गेट अफोर्डेबल प्राइमरी केयर विद पैशन हेल्थ डायरेक्ट फॉर जस्ट $85 अ मंथ, इंक्लूडिंग प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेलीपैथ एंड मोर। यू कैन कॉल और टेक्स्ट देम, द नंबर टू कॉल इज 214-666-6259 or you can visit passionhealthphysicians.com. This program is not health insurance, so eligibility restrictions may get applied.

मोर म्यूजिक मोर मस्ती और मोर मैजिक के साथ दोस्तों आपको फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं 34 मिनट्स पास्ट 7। बस कुछ चंद मिनटों का सफर बचा है दोस्तों आपका और मेरा, और उसके बाद टाटा बाय बाय कहने का समय आ जाएगा। तो चलिए लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट। हमारा कार्डियो सेशन चल रहा है तो उसको और आधे घंटे तक कंटिन्यू करते हैं और अमेजिंग स्लो पेस और फास्ट पेस गाने सुनते हैं। तो चलिए अभी जो अगले गाने हैं वो पूरे के पूरे मेरे चॉइस के हैं क्योंकि आपके चॉइस के गाने खत्म हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर द लवली पार्टिसिपेशन, थैंक यू सो मच फॉर एवरी टाइम कॉलिंग इन एंड गिविंग योर रिक्वेस्ट सो दैट आई कैन प्ले हियर फॉर यू। जब आपके पसंद के गाने आपके लिए यहाँ पर प्ले करने का मुझे मौका मिलता है वो शो मेरा सबसे हिट शो है, मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि आपके पार्टिसिपेशन के बिना, आपके प्यार के बिना या फिर आपके कॉल्स के बिना हमारा शो, हमारे शो बहुत ही अधूरे अधूरे रहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट लव एंड थैंक यू सो मच फॉर दोज कॉल्स, कीप देम कमिंग इन बिकॉज दैट्स द मोटो ऑफ फनेशिया रेडियो 104.9 FM। तो चलिए विद दैट आपको लेकर चलती हूँ फास्ट पेस गानों की तरफ और ये गाने हैं फ्रॉम द मूवी सर्कस।

परम सुंदरी से दोस्तों, ये फास्ट पेस गाना सुन रहे थे आप। अभी स्लो पेस गाने की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले बता दूं दैट लेड बाय सीपीए सुधीर पाई, माय टाइम इक्विटी ऑफर्स पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजीज फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एंड रिटायरमेंट प्लानिंग। सो यू कैन विजिट mytimeequity.com और यू कैन कॉल देम। द नंबर टू कॉल इज 4697021272।

ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गाना दोस्तों सोनू निगम की आवाज में सुन रहे थे आप, टेकन फ्रॉम द मूवी परम सुंदरी, और ये था स्लोपेस गाना फ्रॉम द मूवी परम सुंदरी। और अभी लास्ट कॉम्बिनेशन बचा है इस शाम का जो आपको लेकर चलती हूँ, और ये बहुत ही खूबसूरत गाने सुनेंगे हम, टेकन फ्रॉम द मूवी कलंक, और उसके बाद टाटा बाय बाय कहने का समय आ जाएगा। एंजॉय दिस ट्रैक्स।

ऑलराइट दोस्तों, इसी के साथ स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं 7:55। यही कहूंगी, वक्त हो गया है मेरे जाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आज की शाम साथ निभाने का। दोस्तों, आपके साथ से ये सफर बहुत ही खूबसूरत, सुरीला और सुहाना होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और ये फन एशिया रेडियो का स्टूडियो मेरी हैप्पी प्लेस है। यहाँ पर आकर मैं जितनी हैप्पी हैप्पी होती हूँ, उतना ही हैप्पी हैप्पी आपको बनाने की मेरी इच्छा आकांक्षा और मनोकामना रहती है। With that, दोस्तों, live fully, love passionately and laugh loudly. लेती हूँ आप सबसे विदा इसी thought के साथ और करती हूँ next Sunday, same time, same show, same channel on 104.9 FM पर मिलने का वादा. This is your host RJ Apurva signing off for tonight. Have a great night ahead, Dallas, and have a beautiful Monday morning and the rest of the week ahead. Bye bye and good night.

अरे क्या गाने रेकमेंड कर रहे हैं यार सब डैलस वाले यार, अमेजिंग यार। स्टूडियो में झूम उठने का मन कर रहा है। आई होप आप लोग को भी ये मन कर रहा है, एंड अगर नहीं कर रहा है तो लेट अस नो योर जैम। 972-235-5555 इज द स्टूडियो का नंबर। दिस इज अ संडे पॉप स्टेशन विद आरजे प्रेम, एंड वी डू दिस एवरी संडे फ्रॉम 8 to 10 PM। कीप हिम कमिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। नेक्स्ट गाना हमको नीरज ने रेकमेंड किया है, अदनान सामी का लिफ्ट करा दे।

Such an iconic song. Can you imagine this song was released in 2001? 25 साल हो गए यार. और अगर आपको इसका वीडियो याद नहीं है तो मेरे को तो अब भी, मैं देख रहा था इसका वीडियो, उफ बॉम्बे की याद आ जाती है यार. पूरा का पूरा वीडियो इज शॉट एट बांद्रा इन ऑन कार्टर रोड, फिर बैंड स्टैंड, फिर वर्ली सी फेस, और इतना मजा आ गया यार. ओफ 25 साल हो गए इस गाने को. कैन यू इमेजिन, इट फील्स, आई फील सो ओल्ड नाउ. ऑलराइट, कीप हिम कमिंग लेडीज एंड जेंटलमैन. दिस इज द संडे पॉप स्टेशन विद प्रेम जोशी. एंड ऑफ कोर्स मुझे एक अभी रिक्वेस्ट आई है, ठंडा ठंडा पानी. अगर आपने वो गाना नहीं सुना है तो ये लेजेंडरी सॉन्ग फ्रॉम द मिस्टर आइकॉनिक 101 बाबा सहगल, जो हमारे फर्स्ट रैपर है, उनका ये गाना है. एंड मुझे सही में लगता है कि पूरे डैलस वासियों ने ये गाना पूरे के पूरे सितंबर महीने में ये गाया होगा, बिकॉज वी हैड अ क्रेजी सितंबर, राइट लेडीज एंड जेंटलमैन. सो मेनी डेज वी हैड ट्रिपल डिजिट्स लाइक बैक टू बैक. आई थिंक लास्ट टाइम आई हर्ड इट वॉज लाइक 40 डेज कंजेक्यूटिव वी हैड मोर देन 96-97 डिग्रीज, विच इज इनसेन. थैंक गुडनेस वो टाइम खत्म हो चुका है. अभी the highest that we are going to be expecting this next week is going to be 84-85, which is great. So next gana Kishore ne mujhe recommend kiya hai, thanda thanda pani, 1992 ka gana hai ye, Baba Sehgal ka. Have a listen, ladies and gentlemen. Studio ka number wapas bol deta hu, 972-235-5555.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: ब्रेकफास्ट में क्या खाना है?
4: कीमा पराठा।
5: मम्मी ऑमलेट पराठा।
6: बेटी हलवा पूरी और तरकारी।
3: अब संडे को तीन अलग नाश्ता कौन बनाएगा?
2: सिग्नेचर क्विजीन बनाएगा। चूज एनी डिलिशियस ब्रेकफास्ट ऑप्शन, कीमा विद पराठा, हलवा पूरी विद तरकारी और ऑमलेट विद पराठा, सर्व्ड विद अ कप ऑफ हॉट कड़क चाय फॉर ओनली $8.99. अवेलेबल ड्यूरिंग वीकेंड ब्रेकफास्ट आवर्स एट सिग्नेचर क्विजीन इन प्लेनो। वीकेंड का मूड गर्मा गर्म देसी फूड। विजिट सिग्नेचर क्विजीन .net.
7: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
8: Huzoor, aapko chunna hoga, hum ya ye biryani?
9: Begum, mohabbat apni jagah, lekin barista ki Hyderabadi biryani apni jagah.
8: Aakhir kya hai is biryani mein?
9: Dam mein narmi, masalon mein jadoo aur har niwale mein nawabi swaad.
10: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
2: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
10: Barista House, richness of biryani bliss.
11: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
12: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
13: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
12: सच में सब संभाल लेंगे?
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
14: ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर इंप्रेशंस, कैंपेन का रिजल्ट?
15: योर ऑनर, हजारों लोगों ने ऐड देखा।
14: मिस क्लिक्स?
16: 100 लोगों ने क्लिक भी किया।
14: कस्टमर्स कितने आए?
17: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
18: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Phanasia Network product.
19: Welcome back, ladies and gentlemen. A happy, happy Sunday to each one of you. I hope you're having a beautiful late evening with your friends, family, and loved ones. This is the Sunday Pop Station with Prem Joshi. Vaise last week hamara off tha because I've been traveling. We went to Denver. We did some hikes in Colorado. We'll talk about that in detail. But of course, keep the momentum on. पॉप सॉन्ग्स बैक टू बैक रेकमेंड हो रहे हैं, प्लीज करते रहिएगा। 972-235-5555 इज द स्टूडियो का नंबर, एंड इफ यू कांट पिक अप द फोन एंड कॉल अस, डीएम्स आर आल्सो ओपन ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। जस्ट हिट अस, सेंड अस अ मैसेज, द नेम ऑफ द सॉन्ग, द आर्टिस्ट, एंड इफ यू आर रेकमेंडिंग अ सॉन्ग और डेडिकेटिंग अ सॉन्ग टू अ स्पेशल वन, उनका भी नाम डाल दीजिए, वो गिव यू अ शाउट आउट। फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया, प्रेम जोशी पॉडकास्ट, PREM JOSHI podcast, and you can DM us there as well. First song of the segment is recommended by Karina, who also hails from Mumbai, and unhone mere ko recommend kiya hai Jaane Kisne by Shamak Daur. Here we go.

में शामिल है, वो कौन है जो मेरी मंजिल है, वो कौन है जिसे मैं सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ।

बन के साया मेरे संग रहता है कौन, मैंने ये न जाना कभी, ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ है अभी। वो ख्वाब है या हकीकत है, वो जो भी है मेरी जरूरत है जरूर।

0: Club Phonasia.
1: I'm loving the music.
0: The ultimate destination for Bollywood dance hits.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: बेटा, 95% आए?
5: हाँ मम्मी.
4: गुड. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
6: मेरा?
4: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
6: वो
7: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
8: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
9: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
10: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
9: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
10: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
11: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khanzada, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओगी. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया.
12: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

0: Get your body moving and your heart pumping with the hottest dance tracks on your airwaves.
1: Turn it up.
0: Brought to you by Club Phonasia.
2: नमस्ते बहनों भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत।

0: कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
4: Order. Mr. Impressions, campaign ka result.
5: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
4: Miss Clicks?
6: 100 logon ne click bhi kiya.
4: Customers kitne aaye?
7: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
8: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Funasia Network product.
9: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

0: सुबह ड्राइव पे
1: यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फनी शेयर रेडियो दोपहर फोन पर
2: आई डोंट लिसन टू स्पॉटिफाई आई लिसन टू फनी शेयर रेडियो
0: शाम को घर पर
3: You are listening to Fun Asia Radio.
0: Your customers are everywhere. तो आपका बिजनेस सिर्फ एक जगह एडवर्टाइज क्यों हो
1: Fun Asia Network के साथ कस्टमर्स तक पहुँचे रेडियो से डिजिटल तक And with Smart Reach AI, take your business to local customers while tracking calls, bookings or visits. A 360 degree advertising solution for your business. So customers can hear about you, see you and connect with you.
0: To advertise, call 469-424-3188 or email sales@funasia.net.
1: Fun Asia Network. Be heard, be seen, be chosen.

0: the heartbeat of Dallas. Fun Issue Radio, 104.9 FM.
1: तुमने दुबई के चक्कर में हमसे बिया किया? हमसे कतई प्यार नहीं था।

म्यूजिक MG, तुझे बीच सड़क में रोक के दूंगा मौके देखने के मेरे शो के। इट्स ओके, तेरे पीछे पड़ा हूँ लाखों लड़

0: दूर से बेबी ओवरसी।
1: अजी सुनते हो?
2: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
3: The OG of Tax Planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस। एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फनेजिया रेडियो।
4: सुबह ड्राइव पे
5: यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फनेजिया रेडियो।
6: दोपहर फोन पर
7: आई डोंट लिसन टू स्पॉटिफाई, आई लिसन टू फनेजिया रेडियो।
4: शाम को घर पर
8: You are listening to Fun Asia Radio.
4: Your customers are everywhere. तो आपका बिजनेस सिर्फ एक जगह एडवर्टाइज क्यों हो?
6: Fun Asia Network के साथ कस्टमर्स तक पहुँचे रेडियो से डिजिटल तक एंड विद स्मार्ट रीच AI, टेक योर बिजनेस टू लोकल कस्टमर्स while ट्रैकिंग कॉल्स, बुकिंग्स और विजिट्स. A 360 degree advertising solution for your business. So customers can hear about you, see you and connect with you.
4: To advertise, call 469-424-3188 or email sales@funasia.net.
6: Fun Asia Network. Be heard, be seen, be chosen.
9: दिल का दरवाजा खोल दिया, तेरी मम्मी को भी बोल दिया, आंटी मैंने इसको लव स्टोरी में लीड वाला रोल दिया, तेरे भाई की टेंशन नहीं है मुझे, उसे बोल दिया मैं चाहूँ तुझे, वो प्यार से माने ठीक है, नहीं मेरे बाउंसर्स देखेंगे उसे। तू क्यों चिंता कर रही है, साला है अपना मान जाएगा, तू सुन अकेली।

0: फन की फ्रीक्वेंसी बजे दिन रात।
1: मैं बहुत अच्छा गा लेता हूँ।
2: अच्छा सुना सुना?
1: हाँ वो मेरी प्रैक्टिस नहीं अभी।
2: अगली बार प्रैक्टिस करके आना और किसी और के लिए मत गाना।

0: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
1: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
0: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
1: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाई सुपरहिट
2: Hello guys, this is me Kinjal Dave and you are listening and watching Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

कितनी। पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाय सुपरहिट
4: रेडी फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी एंड अ फ्रेश Start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media,

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.
2: हमारे साथ मेवाड़ चलेंगी पद्मावती, हमारी पत्नी बनकर.

0: ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर इंप्रेशंस कैंपेन का रिजल्ट
1: योर ऑनर हजारों लोगों ने ऐड देखा
0: मिस क्लिक्स
2: 100 लोगों ने क्लिक भी किया
0: कस्टमर्स कितने आए
3: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
2: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Funasia Network product.
4: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: me.
1: Kaash,
0: please help me.
1: Tu meri aankhein bhar de.
2: Aise kaise gayab ho gaye?
3: Pata nahi sir.
2: Are, recordings lined up hai, shows organized kiye hue hai. कौन करेगा ये सब?
3: हाँ सर,
2: पता लगाओ कि कहाँ गए ये दोनों।
3: जी सर, पता लगा रहा हूँ।

0: are capable of anything.
1: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Beta, 95% aaye?
4: Haan, mummy.
3: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
5: Mera?
3: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated.
5: वो
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी कैश फ्लो टैक्स प्लानिंग बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज विजिट agfintax.com कॉल 972-618-8555 एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
7: रेडी फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी एंड अ फ्रेश स्टार्ट इन योर करियर वी आर लुकिंग फॉर एनर्जेटिक एंड मोटिवेटेड प्रोफेशनल्स टू जॉइन आवर टीम अक्रॉस मल्टीपल पोजीशंस इफ यू आर बिटवीन 25 एंड 40 विद एक्सपीरियंस इन media, sales, or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual, and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.

0: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice.
1: Subha Drive Pe.
2: You're listening to 104.9 FM Funny Share Radio. दोपहर फोन पर
3: आई डोंट लिसन टू स्पॉटिफाई आई लिसन टू फन एशिया रेडियो
0: शाम को घर पर
4: यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो
0: योर कस्टमर्स आर एवरीवेयर तो आपका बिजनेस सिर्फ एक जगह एडवर्टाइज क्यों हो
5: फन एशिया नेटवर्क के साथ कस्टमर्स तक पहुंचे रेडियो से डिजिटल तक एंड विद स्मार्ट रीच AI टेक योर बिजनेस टू लोकल कस्टमर्स व्हाइल ट्रैकिंग कॉल्स बुकिंग्स और विजिट्स अ 360 डिग्री एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस सो कस्टमर्स कैन हियर अबाउट यू सी यू एंड कनेक्ट विद यू
0: टू एडवर्टाइज कॉल 469-424-3188 और ईमेल sales@funasia.net
5: Fun Asia Network. Be heard, be seen, be chosen.

0: पंडित जी दूल्हा है दुल्हन है, हम हवन लगवा के फेरे ले लें।
1: ये मैं पंडित दिखता हूँ नहीं, मेरी तो बाहर आलू चाट की रेडी है।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: लिस्ट भी दे दी है।
1: कितनी लंबी लिस्ट है?
0: बस दो पेजेस। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी।
1: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL वर्ल्ड वाइड है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
2: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL वर्ल्ड वाइड शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्ड वाइड। विजिट SFLWorldwide.com.
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
3: क्या मतलब?
4: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
4: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
3: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
5: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: Elwing वालो, ध्यान से सुनो। ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, हिंट है। Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
7: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
8: Well, let's go ahead and get this week started. It is Monday, the 5th of October. Sabse pehle, tareef us upar wale ki, jisne duniya banai. Chaand sitare banaye, zameen aasmaan banaye. Insaan ke dil mein mohabbat ka jazba paida kiya. Usi upar wale ki tareef hai, jisne mujhko, aapko aur ye saari kainat ko इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, याली मदद, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।

0: It is 9 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
5: कौन सा?
4: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
5: अरे सारे तो सेम है.
4: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
5: ओ हाँ, ये तो अलग है.
6: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
7: Dil ki baat kisse kahe?
8: Pandit Gurudev se. 35 saal se zyada ke experience ke saath, Pandit Gurudev karte hain kundali reading, birth chart analysis, palm reading aur face reading. ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी रिमूवल में एक्सपर्टाइज. प्यार, शादी या रिश्तों की उलझन हो तो पर्सनल गाइडेंस लीजिए. कॉल 4695811777. दैट्स 4695811777. पंडित गुरुदेव, आइए अपनी बात कहिए.
9: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इट्स टाइम टू टर्न अप द फ्लेम. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, sizzling flavors और चटपटे appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m. Order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
10: पान से आठ, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. कल हिंदी हिंदी बोल.
11: यू नो माय वॉइस ऑन द रेडियो, नाउ लेट मी बी अ वॉइस यू कैन ट्रस्ट इन रियल एस्टेट. मैं हूँ नवनीता खेमका, रियल्टर विद केलर विलियम्स रियल्टी. बाइंग, मूविंग और सेलिंग अ होम, आई ब्रिंग मार्केट नॉलेज, क्रिएटिव मार्केटिंग एंड पर्सनल कमिटमेंट टू योर जर्नी. बिकॉज टू मी रियल एस्टेट इजंट जस्ट अबाउट प्रॉपर्टीज, इट्स अबाउट यू मेरे दोस्तों, योर पॉसिबिलिटीज एंड योर न्यू बिगिनिंग्स. Every home has a story. Let's create yours together.
12: Call Namrita Khemka at 347-449-4242.
10: Phone uthaye, number dabaye.
11: 347-449-4242.
13: Elwing walo, dhyan se suno. Ye sirf music nahi, hint hai. Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
14: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hain.
15: Are sun, ye astrologer bol raha hai 2026 teri rashi walon ke liye bahut lucky hai.
16: Ma, reels pe sab lucky hi hote hain. Generic predictions sabko thodi help karti hain. To phir agar real clarity chahiye to personalized guidance lo.
17: Guidance ki baat ho to ek hi naam hai, Pandit Ram तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
16: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
18: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
19: कुछ भी नहीं. Ura debt relief.

9 minutes past 10 o'clock and you're listening to 104.9 FM Fanisha Radio. Good morning, DFW. This is Ramita and welcome to Gup Shup Gully. Aaj hai 5th of October, Monday morning. Aapka dimag chal kaisa raha hai? Ek focused screen ki tarah hai? Ya browser ki tarah jisme 40 टैब्स ओपन हैं और 3 टैब से म्यूजिक आ रहा है और पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी टैब रिस्पॉन्सिबल है उस म्यूजिक की. सीरियसली स्पीकिंग, मंडे का स्ट्रेस कभी कभी काम की क्वांटिटी नहीं होता है, स्ट्रेस ये होता है कि पहले क्या करूं. लाइक यू वेक अप विद अलार्म्स एंड फ्रेशन अप, फिर दिमाग चलता है बहुत सारी चीज़ों में, लाइक ईमेल, गेटिंग अप रेडी फॉर द डे, बच्चों की स्कूल, ग्रॉसरी लिस्ट, स्कूल फॉर्म्स, वर्कआउट एंड दैट कॉल. और जब तक डिसाइड करो, एनर्जी का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी चला गया है. तो आज हम प्रोडक्टिविटी लेक्चर नहीं करेंगे, हम डिसीशन फटीग को थोड़ा सा सिंपल बनाएंगे. अगर आप पूछो यार कि डिसीशन फटीग होता क्या है, तो ये बेसिकली मतलब इसका ये है कि पूरे दिन इतने सारे डिसीशंस लेना कि इवेंचुअली दिमाग डिसीशन लेने से ही थक जाता है. एंड डिसीशंस डोंट हैव टू बी बिग, मोस्टली दे आर वेरी टाइनी. लाइक सुबह क्या पहने, ब्रेकफास्ट क्या खाए, बच्चे के लंच में क्या दे, कौन सा ईमेल पहले आंसर करे, लंच ऑर्डर करे या घर से खाना ले जाए, बॉस को अभी रिप्लाई करे या बाद में, और फिर दिन खत्म होते डिनर क्या बनेगा, वीकेंड में कहाँ जाना है, वगैरह वगैरह. इंडिविजुअली दीज आर इजी, बट व्हेन योर ब्रेन कीप्स मेकिंग चॉइसेस ऑल डे लॉन्ग, मेंटल एनर्जी कैन ड्रॉप एंड लेटर इन द डे यू मे स्टार्ट अवॉइडिंग डिसीजंस, स्टार्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग, चूजिंग व्हाटएवर फील्स इजीएस्ट और जस्ट सेइंग यार मुझे कुछ नहीं पता, आप लोग सब डिसाइड कर लो. इट्स अ वेरी रिलेटेबल थिंग एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर स्माइलिंग ऑफ व्हाटएवर वी आर सेइंग. टिल देन वी फाइंड अ कंक्लूजन. आप लोग म्यूजिक एंजॉय करो, ओनली ऑन 104.9 FM, Fanisha Radio.

हम सोचते हैं कि थकान सिर्फ बड़े डिसीजन से आती है, लाइक जॉब चेंज करना, हाउस लेना, स्कूल चूज करना, बट रियल लाइफ में बैटरी ना छोटे छोटे सवाल से खा जाती है हमारी. लाइक ब्रेकफास्ट में क्या खाए, लंच क्या पैक करें, ब्लू शर्ट पहने या ब्लैक शर्ट पहने, अभी कॉल करें या बाद में, कैलेंडर एक्सेप्ट करूं, ग्रुप चैट म्यूट करें, कॉफी एक और ले या एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट बनिए. हर डिसीजन इंडिविजुअली बहुत छोटी है, लेकिन सुबह से अगर आप 50 डिसीजंस के बारे में ऑलरेडी सोच लिए हो तो दिमाग आपका ऑलरेडी थक गया है. एंड डेफिनेटली अगर आप 10-18 बजे तक ऑलरेडी टायर्ड फील कर रहे हो कि तो जरूरी नहीं है आप लेजी हो. हो सकता है आपका ब्रेन मॉर्निंग से वो ट्रैफिक कंट्रोलर बना हुआ है. यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विद मी रमिता एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डिसीजन फटीग. सो आपकी लाइफ का वो कौन सा छोटी डेली डिसीजन है जो अननेसेसरीली बहुत बड़ा लगता है? मेरा वोट है खाना क्या बनाए.

0: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज। होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज। लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
1: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 थ्रू 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
2: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
3: लिया।
2: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
3: नहीं आया।
2: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है। इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
4: Visit www.sanadainc.com today.
5: Family ko chahiye North Indian, friends ko South Indian. Ab jaye to jaye kahan?
1: Simple, Basera Grand. One destination, double the flavor.
6: Matlab crispy golden dosa?
1: Yes, rich North Indian favorites, flavorful loaded biryanis, aur ek delicious buffet jahan choices hi choices hain.
6: Wow, great food, full variety and everyone's happy.
5: Family dinner ho ya friends ke saath celebration, make every meal grand at Basera Grand. Basera Grand, come hungry, leave happy, together.
7: Hello, accident claim? Okay, name of the lawyer?
8: उमर ख्वाजा।
9: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
10: भूख लगी
11: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
12: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
1: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
13: Order, order. Mr. Impressions, campaign का result.
14: Your Honor, हजारों लोगों ने ad देखा.
13: Miss Clicks,
15: 100 लोगों ने click भी किया.
13: Customers कितने आए?
16: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
17: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. SmartReach AI, turn attention into customers. SmartReach AI, a Phanasia Network product.
18: मेहरबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।

10:36 by the studio clock. You're listening to 104.9 FM Funny Shar Radio. This is Gupshup Gully with me, Rmita. And Gupshup hai aaj Monday wali. You know, Monday ko ek list hona chahiye humare paas. Ek hi list hona chahiye. Jahan pe teen columns hai. 10 nahi, 3. Okay? So, un columns ke headings aise hone hai. Ke must, should aur could. Must mein sirf wo. Jo aaj nahi hua to actual problem hogi. Like bills deadline, important work delivery, doctor call. Should mein wo jo helpful hai, but emergency nahi hai. Like you should do it, but theek hai, baad mein karenge to bhi chalega. Like groceries, workout for many. Inbox cleanup. Aur could mein to bonus life hai yaar. Closet ko organize karna, photos sort karna, perfect meal prep karna, color coded calendar lagana. अगर हो गया तो लवली, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पुलिस नहीं आएगी, आपको पकड़ेगी नहीं. प्रॉब्लम तब होती है जब हम हर कुड को मस्ट बना देते हैं और फिर मंडे एक दिन नहीं, फाइनल एग्जाम लगता है. अभी अभी आप एक काम करो, अभी अपना फोन लो, उसके नोट्स में 3 लाइंस लिख लो, लाइक 1 must 1 should 1 could, और बस मुझे कॉल करो 9722355555. और आपका मस्ट क्या है? मस्ट डिटेल्स प्राइवेट रखनी हो तो सिर्फ कैटेगरी ही बता दीजिए, लाइक वर्क, होम, हेल्थ, मनी या फैमिली. एक रियलिस्टिक लिस्ट और हमारे खूबसूरत गाने ओनली ऑन 104.9 FM फनीशिया रेडियो.

0: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice.
1: Filmon ka maza action, drama, aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
2: Kabhi chatpata sa twist, kabhi tikha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
1: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
2: Papri chaat se malpua rabri tak. Har dish mein mile zindagi. के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट.
3: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panishya.
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
4: Kya matlab?
5: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
5: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
4: Ab to karna hi padega, madam.
6: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: Bindas bolo. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो.
8: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास. जॉइन बंदा बिंदास मारविन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ अनीशा रेडियो पर.
9: चमक चलो

0: You're listening to 104.9 FM Funisha Radio. Aaj hai Monday, October 5th aur aap sun rahe hai Gup Shup Gully with me, Ramita. You know, naya hafta shuru ho gaya hai. To dekhte hai, is hafte aapke sitare aapke liye kya kehte hai. You know, it is very important ke aap hafte ke shuru mein aap jaan jao ke ye pura hafta aapke saath hona kya hai. Ho kya raha hai. होने क्या वाला है. हमारे साथ है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर जी, जिन्हें एस्ट्रोलॉजी में 25 इयर्स ऑलरेडी 25 साल से ज़्यादा की एक्सपीरियंस है और टेक्सास में 22,000 से ज़्यादा क्लाइंट्स को उन्होंने अपने एक्सपर्टीज से उन्होंने गाइड कर लिया है ऑलरेडी. सो ईश्वर जी, फनीशा रेडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है. आप कैसे हैं आज?
1: हेलो, नमस्ते.
0: नमस्ते पंडित जी, कैसे हैं आज आप?
1: हम ठीक हैं, आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं. चलिए शुरू करते हैं मेष से लेकर मीन तक. जानते हैं इस हफ्ते सभी जोडियक साइंस के लिए क्या खास है.
1: श्योर, डेफिनेटली मेष राशि आरिस, दिस वीक ब्रिंग्स न्यू एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस. वर्क मैटर कैन मूव फॉरवर्ड बट अवॉइड रशिंग इनटू आर्गुमेंट्स. मनी लुक्स मैनेजेबल if you control unnecessary spending in everything is very good. In relationship, speak calmly and give other person time. So another one, Taurus, a study week with a gradual progress. You may receive good news regarding work or finance. Family responsibility may need extra attention. Avoid overthinking small issues in your relationship. Gemini, communication is a strength this week. A conversation may open up a new opportunity, work or business related will come. Be careful with paperwork or important messages, emails, all that. Emotionally, don't make quick decision this week. Cancer, family and home matters.

You're listening to 104.9 FM Phanisha Radio. This is Gupshup Gali with me, Rumita. वैसे heartthrob बनना हो या scroll stopper, attention मिलना बहुत जरूरी है. और आज के जमाने में अपने business को भी, like आपके business को भी यही कहानी चाहिए. उनको attention चाहिए. Like product अगर अच्छा है आपका, सर्विस जबरदस्त है, बट सोशल मीडिया पे लोग रुक कर देख रहे हैं या सीधा स्क्रॉल कर रहे हैं उसको. इसीलिए फनीशा नेटवर्क इज हियर टू हेल्प यू इन दिस रिगार्ड, विच ब्रिंग्स इट्स मीडिया एक्सपर्टीज टू योर सोशल मीडिया विथ रिलेटिव मीडिया. रील्स हो, ग्राफिक्स हो, कॉन्टेंट हो, कैप्शंस हो, या आपका पूरा कंटेंट का पैकेज, लिटरल सर्विस टू योर एंटायर बिजनेस इन द फेस ऑफ कॉन्टेंट, वी ब्रिंग रिलेटिव मीडिया आपके लिए, आपके ब्रांड के लिए. सिर्फ वो एंड डेफिनेटली कॉन्टेंट नहीं देता, उस कॉन्टेंट को फनीशा के रेडियो पर, उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, कम्युनिटी प्लेटफॉर्म में एम्पलीफाई भी करेगा रिलेटिव मीडिया. सो अगर आपके बिजनेस का सोशल मीडिया भी थोड़ा सा हार्ट थ्रॉब ट्रीटमेंट अगर डिजर्व करता है, कॉल करिए 4694243188. दैट्स 4694243188 एंड बुक योर कंटेंट ऑडिट टुडे. एंड यू कैन आल्सो रेफर टू द रिलेटिव मीडिया पेजेस व्हिच इज देयर इन द फनीशा सोशल मीडिया पेज. सो रिलेटिव मीडिया फॉर योर बिजनेसेस कंटेंट.

0: અરે કિનારા તો સ્થિર ને સલામત હોય, પણ માણસ એના માટે નથી સર્જાણો. અરે ખારવો ખલાસી તો ઈ કહેવાય કે જે ફણીધર નાગ જેવા દરિયાની હામે ઉતરે, અને ઉતરવું પડે કારણ કે કિનારે તો ખાલી પડે નાની નાની બગલી ને નાના એવા સપના ની રેત વાળી ડગલી ને તોફાનો તરાપ મારે હાલે સાવ.
1: કહાં ગયા, કહાં રખા થા? સુનો ના, મેરા વો વાલા સેટ કહાં હૈ?
2: કોન સા?
1: અરે વો ગોલ વાલા, થોડા ટ્રેડિશનલ, ઉસમે પોલકી ભી હૈ.
2: અરે સારે તો સેમ હૈ.
1: નહીં, વો શ્રી કૃષ્ણ સે જો લિયા થા ના હમને, યે યે યે દેખો યે વાલા.
2: ઓ હા, યે તો અલગ હૈ.
3: અલગ તો હોગા હી, શ્રી કૃષ્ણ જ્વેલર્સ સે જો હૈ. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Aji, sunte ho?
5: Aji, nahi. Aji, sunte hain.
6: The OG of tax planning, AG FinTax. Sunenge aapke financial concerns, denge smart solutions. Every Friday, 9:45 a.m. only on Funasia Radio.
7: ब्रेकफास्ट में क्या खाना है?
8: कीमा पराठा.
9: मम्मी ऑमलेट पराठा.
10: बेटी हलवा पूरी और तरकारी.
7: अब संडे को तीन अलग नाश्ता कौन बनाएगा?
3: सिग्नेचर क्विजीन बनाएगा. चूज एनी डिलिशियस ब्रेकफास्ट ऑप्शन, कीमा विद पराठा, हलवा पूरी विद तरकारी और ऑमलेट विद पराठा, सर्व्ड विद अ कप ऑफ हॉट कड़क चाय फॉर ओनली $8.99. अवेलेबल ड्यूरिंग वीकेंड ब्रेकफास्ट आवर्स एट सिग्नेचर क्विजीन इन प्लेनो. वीकेंड का मूड गर्मा गर्म देसी फूड. विजिट सिग्नेचर क्विजीन .net.
11: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है.
12: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे.
13: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
3: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
12: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
1: दिल की बात किससे कहें?
3: पंडित गुरुदेव से. 35 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ पंडित गुरुदेव करते हैं कुंडली रीडिंग, बर्थ चार्ट एनालिसिस, पाम रीडिंग और फेस रीडिंग. ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी रिमूवल में एक्सपर्टाइज. प्यार, शादी या रिश्तों की उलझन हो तो पर्सनल गाइडेंस लीजिए. कॉल 4695811777. दैट्स 4695811777. पंडित गुरुदेव, आइए अपनी बात कहिए.
14: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है.
15: कितनी लंबी लिस्ट है?
14: बस दो पेजेस. इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी.
15: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो. SFL Worldwide है ना, इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं. पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है.
16: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide. शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड Worldwide. विजिट SFLWorldwide.com.
17: Order, order. Mr. Impressions, campaign का result.
18: Your Honor, हजारों लोगों ने ad देखा.
17: Miss Clicks?
19: 100 लोगों ने click भी किया.
17: Customers कितने आए?
20: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
21: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smartreach AI, turn attention into customers. Smartreach AI, a Funasia Network product.

27 minutes past 11 o'clock. You're listening to 104.9 FM Funisha Radio. This is Gupshup Gali with me, Ramita. And Gupshup is going on about your office communication. Or office communication ki baat ho, to ek cheez ko kaise bhool sakte? And that is meetings, my guys. Office mein har problem ka universal solution kya hai? Let's set up a meeting. Kaam samajh mein nahi aaya? Meeting. Kaam late ho raha hai? मीटिंग. कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है किसी किसी को, उसके लिए मीटिंग. और मीटिंग्स बहुत ज्यादा हो रही है, उसके लिए भी एक मीटिंग. बट सीरियसली, मीटिंग्स होती क्यों है? आइडियली आइडियाज डिस्कस करने के लिए, डिसीशंस लेने के लिए, प्रॉब्लम्स जो हो रही है उन्हें सॉल्व करने के लिए, और सबको आइडियली एक पेज पे लाने के लिए. लेकिन कभी कभी 30 मिनट की मीटिंग के बाद बाहर निकल के आपको अगर ये ना लगा हो कि आप कंफ्यूज्ड है कि एक्चुअली में डिसीशन या डिसाइड क्या हुआ. मेरा सवाल यही है कि आपको ऑफिस मीटिंग्स एक्चुअली में प्रोडक्टिव लगते हैं, या आपको लगता है कि एक सिंपल ईमेल से वो काम हो भी जाता. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, मीटिंग्स होंगे तो हमारे काम कब होंगे? एनी थॉट्स ऑन दैट? इन स्टूडियो का नंबर इज 9722355555. लेट मी नो, मीटिंग्स चल रही है या एक्चुअली में प्रोडक्टिव वाली मंडे.

हेल्थ की बात आए तो कन्वीनियंस भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, स्पेशली जब डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए आपको वेट करना पड़े. सो टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक, जो पिछले 13 साल से कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं, अब एक नए नाम के साथ ग्रो कर रहे हैं. द सेकंड लोकेशन इन फ्रिस्को विद द नेम लनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. यहाँ पे प्राइमरी केयर से लेके अर्जेंट केयर तक इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरे, सिटी स्कैन, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स और स्पेशली हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज भी अवेलेबल है. एंड एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ. एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज, दे आर ओपन 7 days a week from 8 AM to 8 PM. और अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, जैसे कि मैं कन्वीनियंस की बात कर रही थी, नो प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट वॉक इन टू लनॉक्सी मेडिकल विच इज लोकेटेड इन फ्रिस्को. You're listening to 104.9 FM Funny Share Radio. This is Gup Shup Gully with me, Ramita.

0: You're listening to 104.9 FM Funisha Radio. This is Gup Shup Gully with me, Ravita. Jahan topic koi bhi ho, usme thoda sa opinion, thoda sa confusion aur bahut sari gup shup guaranteed ho. Gaane to bajte rahenge, lekin beech mein hamari ye jo thodi bahut baatein, wo continue karenge is chote se break ke baad. Stay tuned and keep listening your Dallas ki dharkan, that is Funisha Radio, bringing the community together. This is Gup Shup Gully with me, Ramita.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Heere moti, main na chahun.
9: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy two, get one free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy two, get one free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho, ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
10: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
11: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
12: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
13: ये लास्ट दिवाली पहना था, ये नेहा की शादी में, इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है. हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है.
14: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके.
13: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
14: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ. तथास्तु.
15: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स, ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को. इंडियन अटायर फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन.
16: अगर मैं कहूँ तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल 300 है और ब्लड प्रेशर 160 तो क्या कहोगे?
13: क्या?
17: Wake up!
18: ड्रीम में रियलिटी चेक अक्सर डर बीमारी का नहीं, उसके पकड़े जाने का होता है. लेकिन व्हाट इफ में मत अटके, एनुअल चेकअप करवाइए.
15: विजिट एलन इंटरनल मेडिसिन एंड ट्रस्ट डॉक्टर वनीता एंड हर टीम फॉर एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग्स एंड वेट मैनेजमेंट. न्यू पेशेंट्स विद सेम डे अपॉइंटमेंट्स वेलकम. कॉल 4696499995 और विजिट aimallen.com.
19: It's the time to clock out.
13: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame.
17: जहां तंदूर की स्मोकी खुशबू सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री ब्रिंग योर फैमिली फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्डन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
20: सुबह ड्राइव पे
21: यू लिसनिंग टू 104.9 FM फनी शेयर रेडियो
22: दोपहर फोन पर
23: आई डोंट लिसन टू स्पॉटिफाई आई लिसन टू फनी शेयर रेडियो
20: शाम को घर पर
21: You are listening to Fun Asia Radio.
20: Your customers are listening. पर क्या आपके बिजनेस की आवाज उन तक पहुंच रही है?
24: Business, products या services? Let Dallas hear about you. Advertise on Fun Asia Network in Hindi, Tamil, Telugu or Punjabi and connect with your customers in their own language.
20: From radio spots to live RJ mentions, let your business become a familiar name on their favorite station.
24: To advertise, call 469-424-3188 or email sales@funasia.net.
20: Fun Asia Network. Be heard. Be remembered. Be chosen.
25: Hi, this is Stephanie Khan. You are listening to Fun Asia Radio.

minutes past 12 o'clock. You're listening to 104.9 FM. Funisha Radio. It's a noon hour aur gapshap gali mein. Ab aapke week ko thora sa realistic shape dete hai. You're listening to Ramita, jahan pe Monday morning se hum aapke weekly schedule के बारे में बात करते हैं, स्पेशली मंडेज को, दैट खूनी मंडे. और मंडे मॉर्निंग हमने ओपन लूप्स की बात की थी. अब चूज करिए वन लूप टू क्लोज बिफोर फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे तक एक ऐसा काम जो अभी आप इस वक्त डिसाइड करने वाले हो कि इस वीक तक ये काम तो खत्म करना ही है. इट्स नॉट लाइक यू विल फिक्स योर एंटायर लाइफ दिस वीक, और नॉट लाइक ऑर्गेनाइज द एंटायर हाउस. Something which is very specific or visible. Like dentist appointment आप इस वक्त इस हफ्ते बुक कर लेंगे. जो रिटर्न पैकेज अगले पिछले हफ्ते से आपके क्लॉजेट में पड़ा हुआ है उसको बाय वेंसडे तक तो ड्रॉप डेफिनेटली कर देंगे. मे बी आपके बच्चों के स्कूल फॉर्म्स जो अभी भी पेंडिंग है आज रात तक आप सबमिट कर दें, या फिर आपके मैनेजर के साथ आपकी डेडलाइन की कन्फर्मेशन. गुड वीकली गोल का एक फिनिश लाइन दिखता है. आप अगर फ्राइडे को क्लियरली बोल सकते हो दैट इज डन, देन इस वीक की खुशी एक अलग ही महसूस होगी. DFW स्टूडियो का नंबर इज 9722355555. लेट मी नो बिफोर फ्राइडे ऐसी कौन सी चीज है जो आप डेफिनेटली इस टाइम पे इस वक्त आप ओथ ले रहे हो मेरे साथ कि यू विल डेफिनेटली कंफर्म एंड कंप्लीट इट. एटलीस्ट ये वीक तो वो काम कर ही लो.

यू नो वीकेंड आते ही एक बहुत इम्पोर्टेंट सा सवाल जरूर उठता है कि लंच में क्या खाना है. आई नो इट्स मंडे बट आई एम ऑलरेडी मेकिंग योर प्लान्स फॉर द वीकेंड, क्योंकि फिर फैमिली को कुछ एक अच्छा चाहिए, दूसरे को कुछ और चाहिए. तो सिंपल सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ, एक वंडरफुल डिलिशियस टेस्टफुल, और क्या ही हमें ऑब्जेक्टिव दू. आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्लेवर लाउंज बफे विच इज लोकेटेड इन फ्रिस्को, द ऑल न्यू वीकेंड लंच बफे जो आप ट्राई कर सकते हैं. लाइक माउथ वाटरिंग डिशेज हो, लाइव काउंटर्स भी है और शेफ स्पेशल्स एंड लॉट्स ऑफ फ्रेश फ्लेवर्स. सैटरडे और संडे दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक. वीकेंड को कुकिंग बंद कीजिए घर पे एंड हेड ऑन टू द फ्लेवर लाउंज विच इज लोकेटेड ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को, क्योंकि वीकेंड में ना कैलोरीज नहीं मेमोरीज काउंट करते हैं हम. सो द फ्लेवर लाउंज विद गुड फूड एंड ग्रेट मेमोरीज. यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विद मी रमिता ओनली ऑन 104.9 FM फनीशा रेडियो.

हम प्लानिंग सब चीज की करते हैं, लेकिन जो चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उससे अक्सर हम निगलेक्ट कर जाते हैं, उसे बाईपास कर लेते हैं। वीकेंड का प्लान, वेकेशन का प्लान, बच्चों का प्लान, लेकिन अपने पैसों के फ्यूचर का प्लान, वो जैसे कहने कहा बाद में देखेंगे वाली लिस्ट में चला जाता है, एंड चला डेफिनेटली जाता है। अगर आप ही करते हो देन इट इज़ नॉट दैट यू शुड बी डूइंग। अगर आप अपने फिनेंशियल गोल्स को थोड़ा सा सीरियसली प्लान करना चाहते हैं, कनेक्ट विद CPA सुधीर पाई एट माई टाइम इक्विटी, जहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट सोल्यूशंस, या फिर जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। माई टाइम इक्विटी विल ऑफर दे पर्सनलाइज स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन योर फिनेंशियल गोल। विजिट mytimeequity.com और कॉल 4697021272। दैट्स 4697021272, क्योंकि फ्यूचर का एग्जैक्ट पता किसी को नहीं है, लेकिन उसकी प्लानिंग आज से करना बहुत जरूरी है। स्टे ट्यून्ड टू फनीशा रेडियो 104.9 FM। दिस इज गपशप गली विद मी रुमिता।

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Doors clean.
3: Check.
2: Windows clean.
3: Check.
2: Kitchen clean.
3: Check.
2: Air ducts clean.
3: Wait, air ducts bhi clean karna hota hai?
4: Bilkul. Jo dikhta hai, wo to hum clean kar lete hain. Lekin jo nahi dikhta, uska kya? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush, plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
5: That garba was totally worth it. We had so much fun.
6: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
5: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
7: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
8: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
9: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
8: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
9: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
8: सच में सब संभाल लेंगे?
9: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
10: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
1: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
11: Kya matlab?
12: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
12: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
11: Ab to karna hi padega, madam.
13: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो। जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री। शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय। पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग।
15: Marvin Das and Bindas Services present the 6th Annual South Asian Food Festival on 1st November from 12 noon to 8 p.m. at the Sound Venue in Koppal. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors, showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.
16: Practice has put you on the right track.
17: हेलो नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून डैलस, दिस इज़ योर होस्ट आयुषी। घड़ी में बज रहे हैं 12:30 और हम पहुंच गए हैं स्टूडियो आपको एंटरटेन करने के लिए। हफ्ते का पहला दिन मंडे, महीने का पहला मंडे, ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन क्योंकि अगर आप अभी बाहर हैं, घर से निकल रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर आपको एंटरटेन करेंगे कुछ बहुत ही प्यारे खूबसूरत बॉलीवुड नंबर्स के साथ। और एक आज वो गाना प्ले कर रहे हैं जो हम सुबह से गुनगुना रहे हैं क्योंकि बैठ के यही गाने सुन रहे थे, और वही गाने आपके लिए लेकर के आए हैं फनेशिया 104.9 FM पर।

परदेश का ये गाना नदीम श्रवण की का म्यूजिक है और कुमार सानू की आवाज़ है. टेकिंग यू टू इट्स अनदर ब्यूटिफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी ताल.

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता? और एक दिन चर्च में,

0: It was this beautiful track from the movie Sapne. और इसके साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का. जल्दी से ब्रेक पे जाइए, वापस आइए, फिर अपना अगला सेगमेंट शुरू करेंगे जहाँ पर कुछ बातें करेंगे ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में जो आए और कब आकर के चले गए पता भी नहीं चला. तो सुनते रहिए फनीशिया 104.9 FM.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume!
4: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
5: Call 857-891-8942 today.
6: What if your next home came fully loaded with over $35,000 in premium appliances, electronics and designer furnishings included? This nearly new home in Cambridge Crossing, Selina, first occupied in January, is available as the seller relocates. Enjoy resort-style amenities, upgraded interiors and truly move-in ready. Just bring your suitcase. Buyer's agents, get your client under contract by October 15th and earn an additional $2,000 bonus. Call Navneeta Khemka with Keller Williams Realty at 347-449-4242.
7: Every home has a story. Let's create yours together.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: ये तारा वो तारा हर तारा।
13: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
14: That garba was totally worth it. We had so much fun.
15: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
14: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
16: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
17: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
13: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
5: इंडिया में घर खरीदना हुआ आसान, गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है फ्रिस्को में अक्टूबर 10th एंड 11th, हाथ रीजेंसी फ्रिस्को 10 a.m. टू 8 p.m. मुंबई, बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद एंड दिल्ली NCR के टॉप डेवलपर्स से मिलने का एक ही मौका. चूज योर होम फ्रॉम 200 प्लस प्रोजेक्ट्स, फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग, एन इवेंट बाय माय स्क्वायर फीट.
18: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.
19: आपके सुहाने सफर का साथी Fun Asia Radio.
0: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 FM पे. और अपने इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे एक्टर्स की जो आए तो बॉलीवुड में बड़ी ही धूम मचा करके. उनके पास लुक्स था, स्क्रीन प्रेजेंस था, परफेक्ट डेब्यू था और उनके साथ ब्लॉकबस्टर्स भी थी. उनकी कई फिल्में या पहली फिल्में ब्लॉकबस्टर रही और उसके बाद हमने सोचा कि यही वो एक्टर है जो कि नया सुपरस्टार होने वाला है. लेकिन बॉलीवुड बहुत अनप्रडिक्टेबल है. समटाइम्स सक्सेसफुल फिल्म क्रिएट अ मैसिव स्टार ओवरनाइट, बट द चैलेंज इज कीपिंग दैट स्टारडम. यही तो कला है ना कि कैसे उस स्टारडम को जिंदा रखा जाए. तो आज ऐसे ही कुछ एक्टर्स की बात कर रहे हैं जिनको हम जिनके बारे में उनके फिल्मों के बारे में बात करेंगे कि वो बॉलीवुड में आए तो बड़े ही प्रॉमिसिंग एक्टर्स बनके और कुछ बहुत ही मेमोरेबल फिल्म्स भी दी हमें और उनने में विश्वास दिलाया कि वो उनका कोई लॉन्ग जर्नी होगी और सुपरस्टार बनेंगे. लेकिन थोड़ा सा मैजिक ना समय के साथ कम हो गया. तो ऐसे कुछ ब्लॉकबस्टर हीरोज की बात करते हैं, वन टाइम ब्लॉकबस्टर हीरोज. अगर आपके दिमाग में कोई एक्टर आता है तो आप मुझे कॉल करके बता भी सकते हैं. स्टूडियो का नंबर है 9722355555. लेकिन जब हम वन टाइम स्टार्स वाले एक्टर्स की बात करते हैं तो लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है कुमार गौरव का. क्योंकि कुमार गौरव जब अपनी पहली फिल्म जो कि 1981 में आई थी लव स्टोरी में दिखे थे ना, तो कईयों को उनसे प्यार हो गया था. और इसके बारे में कि मैं पहले कुमार गौरव के बारे में ज़्यादा बातें करूँ, आपको उनका लव स्टोरी का सबसे जो फेमस ट्रैक है वो

1981 में आई थी लव स्टोरी में दिखे थे ना, तो कईयों को उनसे प्यार हो गया था। और इसके बारे में कि मैं पहले मतलब कुमार गौरव के बारे में ज़्यादा बातें करूं, आपको उनका लव स्टोरी का सबसे जो फेमस ट्रैक है वो सुना देते हैं। आपके मन में भी कोई गाना हो, कोई ऐसा एक्टर हो जैसा कि मैंने बोला, तो प्लीज़ कॉल करिए स्टूडियो के नंबर पे और बताइए हमें, हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। फ़िलहाल ये बहुत ही प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी लव स्टोरी।

1981 में आई लव स्टोरी, कुमार गौरव की वो फिल्म जिसने उनको ओवरनाइट सेंसेशन बना दिया था, और उनका चॉकलेट बॉय लुक, हेयर स्टाइल, रोमांटिक इमेज और फिल्म के सुपरहिट गाने, सब कुछ ऑडियंस को क्रेजी कर रहा था। रातों रात लोग उनके दीवाने हो गए थे और बस उनको लग रहा था कि यही है हमारा आने वाला अगला सुपरस्टार। लेकिन प्रॉब्लम थी, लव स्टोरी जैसी सक्सेस को वो रिपीट नहीं कर पाए। बहुत मुश्किल था उनके लिए रिपीट करना, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी फिल्में की उन्होंने, तेरी कसम, स्टार, लवर्स, रोमांस और ऑलराउंडर जैसी फिल्में आई, लेकिन वो सेम मैजिक नहीं क्रिएट कर पाई जैसा लव स्टोरी ने किया था। हाँ, नाम में एक और फिल्म आई थी नाम, जिसमें उन्हें काफ़ी सक्सेस मिली, लेकिन वो जो पहला चाम था ना, मतलब जिसका लोग इंतज़ार कर रहे थे, दैट वाज दिस फिल्म की, जैसा लव स्टोरी में जैसे उनको देखा था, वो मैजिक रिपीट करना मुश्किल था और वो नहीं कर पाए। अगले गाने की तरफ लेकर के चल रहे हैं, ये भी कुमार गौरव की ही फिल्म का गाना है जिसमें वो पूनम ढिल्लों के साथ आए थे। फिल्म का नाम है तेरी कसम।

कुमार गौरव, ये एक नाम जो कि बॉलीवुड में आया, बहुत अपना सेंसेशन बनाया पहली फिल्म के साथ, और फिर कहीं कुछ फिल्में करके चार्म क्रिएट ना करने के कारण ये गायब ही हो गए। वैसे कुमार गौरव के अगर बारे में बात करें पर्सनल डिटेल्स, तो उनका असली नाम था मनोज दुले, और ही वाज द सन ऑफ जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार, जो कि बहुत नामी एक्टर्स थे और बहुत ही मशहूर थे। उनके उनके बेटे हैं ये, और इनके बारे में कुछ अगर बातें जो बहुत लोगों को नहीं पता है, दैट ही वेंट टू बिशप कॉटन स्कूल इन शिमला, और वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की थी। एंड उनके कॉलेज क्लासमेट्स में अनिल कपूर भी हुआ करते थे। उनका बॉलीवुड कनेक्शन ऑब्वियसली अपने पिता के नाम से मे भी हो सकता है उनको फिल्म मिली, पर वो चाम जो उन्होंने पहली फिल्म में क्रिएट किया था ना, वो लंबा नहीं चल पाया। तो फिल्म जो उनके साथ जो एक्ट्रेस आई, विजेता पंडित, जो कि लव स्टोरी की लीड एक्ट्रेस थी, अभी हमारी कॉलर पूनम जी का फोन आया था, उन्होंने भी यही बताया दैट वो भी तो गायब हो गई। दोनों ने पहली फिल्म में ऐसा बड़ा प्रॉमिसिंग सा कमिटमेंट दिया लोगों को कि हम आएंगे और बहुत खूबसूरत फिल्में देंगे, बट दे बोथ वैनिश सडनली। बट हाँ, ये थी कुमार गौरव के बारे में कुछ बातें। ऐसे कुछ और एक्टर्स की कहानियाँ, किस्से हम आपके लिए लेकर के आएंगे अपने इस सेगमेंट में, जहाँ पर हम ऐसे एक्टर्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने पहली फिल्म में बहुत ही चार्म क्रिएट किया, प्रॉमिसिंग लगे, बट सडनली हो गए वो गायब। अगर आप भी इनकी फिल्मों के कुछ गाने सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ स्टूडियो के नंबर पे कॉल करिए, जो कि है 972-235-5555, या फिर कुछ ऐसे एक्टर्स के बारे में बताना चाहते हैं जो आपको लगता है उनकी जर्नी भी कुमार गौरव जैसी ही रही, तो प्लीज़ वो भी बताइए हमें। एंड अभी हम और पूनम जी यही बात कर रहे थे दैट वी आर नॉट सीइंग आहान पांडे एंड अनीत पड्डा, हु गिव सच अ ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस इन द मूवी सयारा, एंड वी वॉन्ट टू सी देम मोर, बट पता नहीं कहाँ गायब हैं ये दोनों के दोनों। सो होपिंग कि ये लोग कुछ बड़ा ही ऐसे प्रॉमिसिंग और मज़ेदार करें और मूवीज लेकर के आएं, एंड दे शुड नॉट वैनिश लाइक कुमार गौरव एंड विजेता पंडित। अगले गाने की तरफ आपको लेकर के चलते हैं, लेकिन आपको बता दें कि दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटैक्स, ऑफरिंग ट्रस्टेड टैक्स अकाउंटिंग पेरोल बुक कीपिंग एंड बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस। कॉल 469-942-9888 और विजिट agfintax.com टुडे। ये रहा अगला गाना, ये भी कुमार गौरव की फिल्म कुमार गौरव की ही फिल्म से है, एक ब्यूटीफुल सा ट्रैक। इसकी फरमाइश हमारे कॉलर की तरफ से आई थी, तो सुनाते हैं आपको ये जल्दी से।

सो हियर वॉज दिस ब्यूटिफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी तेरी कसम. इसमें थे कुमार गौरव और उनके बारे में हम बात कर रहे थे. आज कुछ ऐसे ही एक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आए बड़े ही प्रॉमिसिंग दिखते हुए पर हो गए सडनली गायब. वैसे अगर लिस्ट देखी जाए और मेरे कॉलर्स की बात सुनी जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बट अगले एक्टर जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो 90s के सेंसेशन बन के आए थे. उनका नाम है राहुल रॉय. राहुल रॉय वॉज वन ऑफ द एक्टर्स जो बड़े ही प्रॉमिसिंग लगे. उनको देख करके बस सबको लगा कि अब यही है नेक्स्ट सेंसेशन 90s का. बट वही हुआ, पहली फिल्म इतनी अच्छी गई कि मत पूछिए और उसके बाद फिर पर्दे पर वो बहुत ही कम दिखे. उनके बारे में और बात करेंगे लेकिन पहले उनकी फिल्म का ये गाना सुनते हैं, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत गाना फिल्म आशिकी से.

0: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे बीच मिस्टर एंड मिसेस पेस्टन जी अपनी।
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
2: ओ हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: It's true, hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
5: That garba was totally worth it. We had so much fun.
6: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
5: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
7: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
8: बेटा, 95% आए?
9: हाँ मम्मी।
8: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
10: मेरा?
8: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
10: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
11: Dil ki baat kisse kahein?
12: Pandit Gurudev se. 35 saal se zyada ke experience ke saath, Pandit Gurudev karte hain kundali reading, birth chart analysis, palm reading और face reading, black magic और negative energy removal में expertise. प्यार, शादी या रिश्तों की उलझन हो तो personal guidance लीजिए. Call 469-581-1777. That's 469-581-1777. Pandit Gurudev, आइए अपनी बात कहिए.
13: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
14: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
13: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज.
14: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपर हिट.
3: सुबह ड्राइव पे
15: यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM Funny Share Radio.
16: दोपहर फोन पर,
17: I don't listen to Spotify, I listen to Funny Share Radio.
3: शाम को घर पर,
18: You are listening to Fun Asia Radio.
3: Your customers are everywhere. तो आपका बिजनेस सिर्फ एक जगह एडवर्टाइज क्यों हो?
16: Fun Asia Network के साथ कस्टमर्स तक पहुँचे रेडियो से डिजिटल तक, and with Smart Reach AI, take your business to local customers while tracking calls, bookings or visits. A 360 degree advertising solution for your business, so customers can hear about you, see you and connect with you.
3: To advertise, call 469-424-3188 or email sales@funasia.net.
16: Fun Asia Network. Be heard, be seen, be chosen.
19: 9 FM. Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Non-stop entertainment.
15: Non-stop entertainment chal raha hai. Fun Asia 104.9 FM pe aapka swagat hai. Is chote se commercial break ke baad aur filhal aapka swagat hai hamare Ura Debt Relief segment mein. And today we have the pleasure of having Ura Debt Relief Organization representative Mr. Aman. He's going to tell us about Ura Debt Relief program. Hi Mr. Aman, thanks for joining us on 104.9 FM Fun Asia Radio. Kaise hain aap? How are you doing today?
4: All good, thank you. Monday है, Monday किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन खैर काम का दिन है, starting of the week है. So दोस्तों, अमन और उरा की तरफ से नमस्कार. आप
9: इस महीने की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है. वीकेंड एंजॉय करने के बाद इस हफ्ते की शुरुआत में आपको लव लेटर्स मिलने शुरू हो जाएंगे क्रेडिट कार्ड कंपनी वालों के कि क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट ड्यू है और उनके बैंक भरने शुरू हो जाएंगे. लेकिन अगर आप इस बार वो गलती ना करें जो पिछले कुछ महीनों से आप करते आ रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट सिर्फ आंखें बंद करके भर रहे हैं, एक बार स्टेटमेंट खोलिए और उसमें देखिए कि अगर आप मिनिमम पेमेंट भरते हैं तो 32 से 45 साल लगेंगे आपको क्रेडिट कार्ड को पे ऑफ करने में. ये लिखा हुआ है आपकी स्टेटमेंट पे. तो अगर आप मिनिमम पेमेंट की जगह उरा को कॉल करते हैं तो उरा आपके क्रेडिट कार्ड का सबसे पहले आधे से ज्यादा कर्जा तो माफ करवा देगा, यानी आधा कर्जा आपको देना नहीं पड़ेगा. जो बाकी आधा बचेगा उसका भी इंटरेस्ट फ्री पेमेंट प्लान बन जाएगा. तो है ना फायदे का सौदा. तो मिनिमम पेमेंट करते रहने से आपका कोई फायदा नहीं होता, ना तो क्रेडिट कार्ड का कर्जा उतरता है, ना डेट टू इनकम रेशियो इंप्रूव होती है जिसके कारण आपका क्रेडिट स्कोर भी डाउन जा रहा है. सो आंखें बंद करके मिनिमम पेमेंट करना बंद कीजिए. जस्ट गिव अस अ कॉल. ना सिर्फ क्रेडिट कार्ड के डेट को हम लोग सेटल करके आधा माफ करवा देंगे, बल्कि आपका कोई पर्सनल लोन हो जो आपने रेनोवेशन के लिए या कोई फॉरेन ट्रिप के लिए लिया था या फिर भाभी जी को एनिवर्सरी गिफ्ट की देने के लिए कुछ का लोन लिया था, लेकिन अगर आप उस लोन को भी आधा माफ करवाना चाहते हैं या फिर गाड़ी अगर टोटल हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है या कुछ इश्यू होने के कारण टोटल हो गई है या रीपोजेस हो गई, ट्रक भी हो सकता है, कार भी हो सकती है, कोई भी गाड़ी हो सकती है जो रीपोजेस हो गई, बैंक उठा कर ले गया, उसको भी अगर आप नेगोशिएट करके माफ करवाना चाहते हैं तो जस्ट गिव अस अ कॉल. मिनिमम पेमेंट करते रहने से कोई फायदा नहीं. गिव अस अ कॉल. हमारा टोल फ्री नंबर है 1-888-888-9914, 888-888-9914, या फिर आप मुझसे भी बात कर सकते हैं. कॉल मी डायरेक्टली 916-776-3555, 916-776-3555, अगेन 916-776-3555. और हमारी वेबसाइट है www.ura.org. तो मिनिमम पेमेंट करने से पहले कॉल कीजिए, आधा कर्जा माफ. नंबर ना लिख पाए हो तो कोई चिंता की बात नहीं, फाइनेंशियो का नंबर तो आपके पास लिखा ही हुआ है. जस्ट कॉल कीजिए, एक गाने की फरमाइश कीजिए, साथ में हम मेरा नंबर ले लीजिए ताकि आपका कर्जा भी माफ हो जाए.
15: थैंक यू सो मच अमन. थैंक यू, आपने सब बता ही दिया. हम भी अमन का नंबर बता देते हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं 1-888-888-9914 पे, या फिर डायरेक्टली अमन से बात कर सकते हैं 916-776-3555 पर, और इनका वेबसाइट है ura.org. थैंक यू फॉर कमिंग ऑन एयर अमन.
9: थैंक यू.
15: तो ये थे अमन साहब हमारे साथ फनेशिया पर. अब अपने शो को आगे बढ़ाते हैं, अपने सेगमेंट को कंटिन्यू करते हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स की, हीरोज की, जो कि आए और गायब हो गए. पहली फिल्म में हमें अपना दीवाना बनाया और उसके बाद पता नहीं खुद कहां दीवानों की तरह गुम हो गए. तो ब्रेक पे जाने के पहले मैंने आपको आशिकी फिल्म का गाना सुनाया जिसमें राहुल रॉय थे, एंड यस उनकी डेब्यू फिल्म थी आशिकी, जिसके बाद उनकी एक अलग ही आइडेंटिटी बन गई, लोग उनके दीवाने हो गए. वैसे अगर आपको बता दें कि वो दिल्ली के थे और उनका जन्म 9 फरवरी 1966 में हुआ था, एंड ही डिड हिज स्कूल फ्रॉम द लॉरेंस स्कूल इन सानवर. और इंटरेस्टिंगली राहुल ने कभी सीरियसली एक्टर बनने की नहीं सोची थी, ना ही उसके लिए कुछ तैयारी की थी. वो इनिशियली मॉडलिंग कर रहे थे. और उनकी बॉलीवुड की जो एंट्री की स्टोरी है वो कुछ इस तरह से है कि उनकी मदर इंदिरा रॉय एक राइटर थी और उनके आर्टिकल्स से फिल्म मेकर महेश भट्ट बहुत इम्प्रेस थे. तो एक मुलाकात के दौरान महेश भट्ट की नज़र राहुल के फोटोग्राफ्स पे पड़ी जो उनकी माँ के पास थे, और उन्होंने उनसे कहा कि उनको राहुल से मिलना है. एंड राहुल के अकॉर्डिंग फर्स्ट मीटिंग के सिर्फ 4 से 6 मिनट के अंदर महेश भट्ट जी ने उन्हें कह दिया था कि वो फिल्म करेंगे उनके साथ. तो बड़े ही इंटरेस्टिंग सी इनकी जर्नी थी. करना नहीं चाह रहे थे, मॉडलिंग कर रहे थे, एंड देन ही मेट महेश भट्ट थ्रू हिज मदर ऑब्वियसली. एंड फिल्म थी 1990 की म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर आशिकी ऑपोजिट अनु अग्रवाल. और फिर जो हुआ वो हम सबको पता है. आशिकी रिलीज हुई और राहुल रॉय बन गए ओवरनाइट सेंसेशन. थिएटर में जब उनका कैरेक्टर उस गाने के साथ सामने आता है जो भी हमने सुना, सांसों की ज़रूरत है जैसे, वैसे ही ऑडियंस स्क्रीन पर उनको देख करके दीवानी हो गई. और ऐसी कई सारी कहानियां हैं जहां पर लोगों ने स्क्रीन पे ही पैसे फेंकना शुरू कर दिया. और ये जो स्टोरी है ये पैसे फेंकने वाली, ये राहुल रॉय ने खुद एक इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में शेयर किया था. तो इस तरह से राहुल रॉय का बहुत ही सेंसेशनल करियर शुरू हुआ आशिकी के साथ. और आशिकी की फिल्म का मुझे याद है जो कैसेट पे कवर था उसमें वो दोनों बारिश में खड़े हैं एंड दे हैव अ कोट. आशिकी 2 में भी वैसे ही एक ब्लेजर या कोट से वो दोनों कवर्ड हैं. और महेश भट्ट की स्ट्रैटेजी थी कि वो उन दोनों का चेहरा मूवी के लॉन्च के पहले तक नहीं दिखाना चाहते. इसके पीछे और कई सारी कहानियाँ हैं जिसके बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन हाँ उसको ऐसे इंटरेस्टिंग बनाने के पीछे हाथ था, क्यूरियोसिटी क्रिएट की. और जब उसके बाद से राहुल का चेहरा स्क्रीन पे आया तो लोग उनके दीवाने हो गए. तो ऐसा कहें कि राहुल रॉय की जो स्टोरी थी ना वो परफेक्ट बॉलीवुड का एग्जांपल है. कभी कभी एक फिल्म आपको ओवरनाइट स्टार बना देती है, लेकिन उस स्टारडम को मेंटेन करना वो असली चैलेंज होता है. और आजकल बड़ा ही नेपोटिज्म और ये वो चल रहा है. देखो, हर कोई स्टार नहीं बन पाता है. हर किसी के स्टार बनने के पीछे ऑडियंस का हाथ होता है. एक दो फिल्में भले चल जाए पर वो जो जगह सुपरस्टार वाली जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. और सब लोग लुक्स होने के बाद भी, एक्टिंग आने के बाद भी कई लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं. तो ऐसे ही कुछ स्टार्स की आज बात कर रहे हैं जो बन के आए सुपरस्टार पर अपनी स्टारडम को मेंटेन नहीं कर पाए. अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं आपको. पूजा भट्ट और राहुल रॉय की फिल्म से है ये गाना. बहुत ही प्यारा और खूबसूरत नंबर है. आपके लिए एक सवाल भी छोड़े जा रहे हैं, बताइए कौन सी फिल्म है ये. 90s के दीवानों, लेट मी नो कौन सी फिल्म है ये.

सो हियर वॉज दिस ब्यूटिफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी फिर तेरी कहानी याद आई. और मैंने कुछ लोगों से पूछा था मूवी का नाम, नाजिया जी और संगीता जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है. थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड लेटिंग अस नो द राइट मूवी. मतलब इसका मतलब भी आप लोग मेरा शो सुन रहे हैं और इसके साथ साथ इसके लिए भी कॉल्स आए कि और कौन कौन से ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो कि अचानक से गायब हो गए. और उनमें कई सारे नाम आए हैं जैसे कि जुगल हंसराज का, जिनके बारे में मैं बात करने ही वाली थी. बट जुगल हंसराज इज़ नॉट वन ऑफ दोज पीपल हु एक्चुअली वैनिश्ड. उनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि इफ़ यू आर इंजर्ड इन अ कार और ट्रक एक्सीडेंट स्लिप और फॉल एक्सीडेंट, फोकस ऑन हीलिंग वाइल अटर्नी उमर फाइट्स फॉर यू एंड यू पे नथिंग अनलेस ही विंस. कॉल 4693005046 और विजिट attorneyomar.com. तो हाँ भाई, हम बात कर रहे थे जुगल हंसराज की. तो जुगल हंसराज बेसिकली एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट आए और उन्होंने कई सारी चीज़ें बॉलीवुड में की हैं. ही डिड नॉट एक्चुअली और सिंपली डिसअपेयर्ड. ही वॉज वन ऑफ दोज एक्टर्स जिनको हमने देखा लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, इस वाले गाने में भी देखा है. और उसके बाद से उनको एज रोमांटिक हीरो भी देखा है. तो 90s में बॉलीवुड को अपना नेक्स्ट चॉकलेट बॉय हीरो मिला जो कि जुगल हंसराज थे. बहुत ही प्यारी सा चेहरा स्क्रीन पे, इतने स्वीट, इतने मासूम, बिल्कुल मासूम, फिल्म वाले मासूम की तरह मासूम लगते थे वो. तो शेखर कपूर ने उन्हें 1983 में उन इनोसेंट चेहरे को, उन एक्सप्रेसिव आइज को तुरंत पहचान लिया और उनको इस मूवी में इंटरेस्टिंगली डाला. एंड वो बहुत सारे प्रिंट एड्स, कमर्शल प्रिंट एड्स और कमर्शल्स में भी हमने उनको देखा है. मासूम में उन्हें शेखर कपूर ने एक एडवर्टिजमेंट देकर कास्ट किया था विदाउट कन्वेंशनल ऑडिशन. फिर बड़े होकर जुगल ने 1994 में आ गले लग जा से लीड हीरो के रूप में डेब्यू किया. उसके बाद डॉन में दिखे, पापा कहते हैं और फिर 2000s में मोहब्बतें आई और यही उनकी इमेज एक हैंडसम सॉफ्ट स्पोकन चॉकलेट बॉय हीरो की बन गई थी. मोहब्बतें में उनका कैरेक्टर समीर शर्मा का था और फिल्म में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर्स के बीच भी जुगल ने अपनी स्क्रीन प्रेजेंस के लिए खुद को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया. लोगों ने उनको नोटिस भी किया था. उसके बाद कभी खुशी कभी गम, सलाम नमस्ते और आजा नचले जैसे प्रोजेक्ट्स में भी वो नज़र आए. बट इस बार लीड में नहीं, वो साइड के कैरेक्टर्स में नज़र आए. लेकिन फिर वो मैजिकल, वो जो उनका मैजिकल प्रेजेंस था स्क्रीन पर, वो ग्रेजुअली गायब हो गया. और यहाँ स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है. जुगल के अकॉर्डिंग उनके करियर में 30-35 फिल्म ऐसी थी जो साइन होने के बाद शुरू ही नहीं हुई. उन्होंने कहा कि अगर वो फिल्म्स बन जाती तो उनका करियर काफ़ी डिफरेंट हो सकता था. एक वक्त पर उन्होंने एक्टिंग के साथ डायरेक्शन और राइटिंग की तरफ भी मूव किया. 2008 में उन्होंने रोड साइड रोमियो डायरेक्ट की जो यशराज फिल्म्स और वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शंस का एनिमेटेड प्रोजेक्ट था. और बाद में प्यार इम्पॉसिबल डायरेक्ट की. रोड साइड रोमियो को नेशनल अवार्ड भी मिला. और इंटरेस्टिंगली जुगल कम्प्लीटली डिसअपीयर्ड नहीं हुए. ही केप्ट कमिंग बैक इन डिफरेंट अवतार्स. कहानी 2, मिस मैच, लव स्टोरी 2, शिव शास्त्री बल्ब, आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन दिस वन. लेकिन हाँ, फैमिली मैन में भी दिखे और 2025 में नादानिया जैसे प्रोजेक्ट्स में उन्होंने सपोर्टिंग रोल्स में कास्ट किया गया. और अब एक फुल सर्कल मोमेंट है जहाँ पर 2026 में जुगल हंसराज मासूम द नेक्स्ट जनरेशन का हिस्सा बन रहे हैं. यानी जिस फिल्म से उनकी जर्नी एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में शुरू हुई थी उसी यूनिवर्स में वापस. तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जुगल हंसराज पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म के साथ आए और एकदम ही गायब हो गए, क्योंकि बाकी एक्टर्स तो बिल्कुल ही वैनिश हो गए थे, दिखे ही नहीं कहीं भी. पर जुगल ने अपना स्क्रीन प्रेजेंस कहीं ना कहीं बना के रखा. उन्होंने कई सारे टॉक शोज भी करे, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें करते रहे जिससे वो हमारे मेमोरी में कहीं थे. बट हाँ, जो उम्मीद थी कि वो बहुत अच्छे ऐसे सुपरस्टार और लगातार हमें पर्दे पर दिखने वाले हैं, वो उनके साथ नहीं हुआ. और मुझे उनसे यहाँ दारस में मिलने का मौका भी मिला था. एंड मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट भी दिया कि जुगल यू आर एजिंग लाइक अ फाइन वाइन, एंड विच ही वाज एक्चुअली, ही वाज लुकिंग वेरी हैंडसम. आई कुड नॉट इमेजिन हिम इन ऑल दोज ग्रे हेयर. बट यार, बंदा उसमें भी इतना हैंडसम दिख रहा था कि मत पूछो. तो मेरा तो मतलब वो था ना कि पापा कहते हैं मैं जो गिटार पकड़े जुगल हंसराज को हमने देखा है, उसको मैंने सामने से देख लिया. So here's this beautiful track from the movie Papa Kehte Hain, Jugal Hansraj and Mayuri Kango.

0: That was जुगल हंसराज, पापा कहते हैं फिल्म का नाम है। चलिए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो रहा है बिजनेस ओनर्स को ये खबर देने का। लुकिंग फॉर अ स्मार्ट कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशन, ट्रस्टारा कमर्शियल एनर्जी प्राउडली सर्विंग टेक्सास बिजनेसेस सिंस 2002 एंड विथ कॉम्पिटिटिव रेट्स, रिलायबल सर्विस एंड कस्टमाइज एनर्जी प्लान्स। कॉल करिए 844-428-2808 पे। रिपीट, इट्स 844-428-2808 एंड विजिट taraenergy.com टुडे। अब वक्त हो रहा है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। जी हाँ, लेकिन वापस आएंगे और इस बार वापस आके हम एक ऐसे एक्टर के बारे में बात करें। थोड़ा सा समय को आगे बढ़ाते हैं, 2000s में आते हैं ये एक्टर। इन्होंने भी बड़ा ही प्रॉमिसिंग सा एक अपना इमेज बनाया पर्दे पर, लेकिन ज़्यादा दिन चल नहीं पाए। इन्होंने शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर किया, फराह खान की फिल्म मिली और वो फिल्म ब्लॉकबस्टर सक्सेसफुल रही और लोगों ने इनको बहुत पसंद भी किया, लेकिन उसके बाद ये सिर्फ मल्टी स्टारर्स करते रह गए और दिखे ही नहीं कहीं। तो क्या आप गैस कर सकते हैं कौन है वो एक्टर जिनसे उम्मीदें तो बहुत थी पर उम्मीद पे खरे नहीं उतरे? अपना एक अलग इमेज जो है पर्दे पर सिंगली स्क्रीन को कंट्रोल करने का वो ये शायद नहीं दिखा पाए और उसके कारण ही नहीं रहे। शाहरुख के साथ स्क्रीन शेयर किया फरहा की फिल्म की एंड देन ही सडनली वैनिश्ड। कॉल करिए स्टूडियो के नंबर पे और बताइए कौन है ये एक्टर। स्टूडियो का नंबर है 9722355555। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 एफएम पे। जल्दी से ब्रेक पे जाते हैं और जाके आते हैं वापस, फिर करेंगे बात किसके बारे में। यस, आई थिंक यू हैव गॉट इट कौन है वो एक्टर। तो जल्दी से जाइए ब्रेक पे और वापस आके बात करेंगे इनकी। फिलहाल कॉल के वेट कर रहा हूँ। यू लिसनिंग टू योर होस्ट आयुषी 104.9 एफएम फन एशिया पर। मिलते हैं।
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क। यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम केजीएमपी 104.9 एफएम HD1 पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 एफएम HD2 सैंगर टेक्सास, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन।
2: ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG FinTax,
1: ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर द लॉ ऑफिसेस ऑफ ओमर क्वाजा
2: इन एसोसिएशन विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
3: एक और लड्डू ले लो।
4: थोड़ी और बिरयानी।
3: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा।
5: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए।
6: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलॉन्ग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
7: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा।
8: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
9: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
10: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
11: डील कहाँ?
10: सिंपल, पास्या पे। इंट्रोड्यूसिंग पास्या, डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
11: डाउनलोड पास्या, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज डील्स दूर नहीं, पास है।
12: डिस्कवर टैसल्स बाय रेनू इन फ्रिस्को, डिजाइनर एथनिक वेयर एट ग्रेट प्राइसेस,
13: फ्रॉम एलिगेंट साड़ीज, लहंगास टू इंडो वेस्टर्न फ्यूजन सेट्स एंड मेंस एथनिक वेयर। Find festive and wedding styles.
12: For exclusive deals and collections, join Renu's weekly Facebook Live or follow them on Insta.
13: Visit tasselsbyrenu.com or call 563-508-5673. That's 563-508-5673. Tassels by Renu. Dress beautifully, celebrate stylishly. वेलकम टू द शादी मेमोरी टेस्ट। रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। डेकोरेशंस का कलर,
4: नेक्स्ट क्वेश्चन।
13: ब्राइड की एंट्री सॉन्ग,
4: याद नहीं।
13: बफे में क्या था?
4: चना पापड़ी चाट, बिहारी कबाब, दिल्ली निहारी, अचारी चिकन, मटन बिरयानी।
8: शादी में बाकी डिटेल्स भूल सकते हैं, लेकिन खाना कभी नहीं। गैदरिंग्स 50 की हो या 500 गेस्ट के लिए, चूज सिग्नेचर कुजीन्स, कस्टमाइज्ड केटरिंग, लाइव कुकिंग स्टेशंस एंड प्रोफेशनल सर्विस। कॉल 972-905-5449। सिग्नेचर कुजीन, द टेस्ट योर गेस्ट्स विल रिमेम्बर।
9: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
14: लिया।
9: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
14: नहीं आया।
9: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
6: Visit www.sanadainc.com today.
15: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
16: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
13: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
17: Hi, this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station, Fanesha Radio.
18: जिंदगी के कई रंग, Fanesha Radio के संग।
0: हाँ जी, तो फिर से एक बार स्वागत है आपका फनेशिया 104.9 FM पे। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को और बहुत मजा आ रहा है आप लोगों के साथ आज शो करके। बिकॉज मैं तो बस 4-5 एक्टर्स सोच के आई थी, आपने इस सेगमेंट को मुझे कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेट कर दिया, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आधे घंटे बचे हैं और इतने सारे एक्टर्स रिमाइंड कर दिए गए हैं मुझे कि मुझे उस पर एक अलग से पूरा का पूरा सेगमेंट बनाना पड़ेगा। तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि क्यों ना हर मंडे कुछ ऐसे ही एक्टर्स की बात करें जिन्होंने हमारे दिल पर जादू किया और फिर हमें धोखा दे के चले। जी हाँ, ऐसे ही कुछ एक्टर्स की कहानी सुन रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं, जो आए तो स्क्रीन पे बड़े ही प्रॉमिसिंग दिखते हुए पर अपना प्रॉमिस तोड़ करके निकल गए। और ब्रेक पे जाने के पहले मैंने पूछा था कि कौन है वो एक्टर्स जो 2000s में आए और उन्होंने, उनको देखकर हमें लगा कि भैया ये बंदा भी अच्छा करेगा। बाकी जितने भी एक्टर्स आ रहे हैं जो कि जिनकी फैमिली फिल्म फटर्निटी में है, जो कि उस समय तक नेपो किड्स वर्ड नहीं था, बट हाँ उस समय जो भी ये फिल्म स्टार्स के बच्चे हैं जिनका इंतज़ार किया करते थे पर्दे पर हम देखने के लिए, वो आए शाहरुख खान के साथ फिल्म की, फरहा खान की पहली फिल्म मिली उनको और इट वॉज़ अ ब्लॉकबस्टर सक्सेस। उस एक्टर का नाम है जायद खान एंड लीजा का फोन आया, उन्होंने मुझे सही जवाब दिया है। सो जायद की पहली फिल्म थी चुरा लिया है तुमने, बट उतना वहाँ पे रिकग्निशन नहीं मिला इनको, सब लोग इनको मैं हूं ना में देखने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली शाहरुख थे, फरहा की फिल्म थी, लोगों को लगा था कुछ ही धमाकेदार होने वाला है एंड दैट्स वॉट हैपेंड। जायद खान सडनली बिकेम वन ऑफ द मोस्ट टॉक अबाउट यंग एक्टर्स एट दैट टाइम। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्में करी जैसे कि वादा, शब्द, 10, शादी नंबर 1, फाइट क्लब, मिशन इस्तानबुल और ब्लू जैसी फिल्में उन्होंने की, लेकिन सक्सेसफुल मूवीज कुछ करने के बाद भी जायद कभी एक कंसिस्टेंट सोलो सुपरस्टार नहीं बन पाए, मोस्टली वो मल्टी स्टारर फिल्म में दिखे। और ऐसा कहा जाता है कि उनकी प्रॉब्लम ये थी कि कई फिल्म्स में वो मल्टी स्टारर ही कर पा रहे थे, ऑडियंस से उन्होंने एक लीड एक्टर का जो एक्सपेक्टेशन था ना उस पर वो खड़े नहीं उतरे। तो उनका लॉन्च फुल ऑन एक सुपरस्टार वाला था, लेकिन करियर का ग्राफ उस स्पीड से ऊपर नहीं गया जैसा हम व्यूअर्स ने एक्सपेक्ट किया था। तो अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं।

उतरे, तो उनका लॉन्च फुल ऑन एक सुपरस्टार वाला था, लेकिन करियर का ग्राफ उस स्पीड से ऊपर नहीं गया जैसा हम व्यूअर्स ने एक्सपेक्ट किया था। तो अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं, फरहा की मूवी शाहरुख खान, उसमें दिखे जायद खान, उनकी फिल्म का ये गाना लीजा की फरमाइश पर।

अजीब बात यह है, मैंने अपने छोटे भाई को कभी देखा ही नहीं। मुझे तो पता ही नहीं वो दिखता कैसा है, लेकिन एक बात का यकीन, उसकी आंखें बिल्कुल मेरे जैसी हो। एक्चुअली मुझे लगता है वो बिल्कुल मेरे जैसा होगा, शांत, सुशील, शरीफ, डिसिप्लिन। पर मेरा दिल कहता है मैं उसे देखते ही पहचान लूं, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण।

हूँ आवारा लेकिन प्यारा, एक्चुअली यही इमेज थी इस फिल्म में इनकी, और ऐसे ही लोगों ने पसंद किया। ये जो आवारा लुक था ना, बड़े बड़े बालों वाला, जब इनके बाल कटे इन दैट क्यूट लुक का, वो जब दिखा पर्दे पे तो सब इनके दीवाने हो गए। आई वॉज टॉकिंग अबाउट आर एक्टर फ्रॉम दिस फिल्म, जायद खान, जिनकी फिल्म का गाना हमने प्ले किया। वन ऑफ दोज एक्टर्स हु वॉज एक्सपेक्टेड टू डू मच मोर बट ही सडनली वैनिश्ड। शो को आगे बढ़ाते हैं, अगले एक्टर के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको पहले बता दें कि अगर आप प्लेनों में अच्छा खाना ढूंढ रहे हैं, देन यू हैव टू ट्राई दिस प्लेस सिग्नेचर क्यूजीन। इट हैज़ ऑल द राइट फ्लेवर्स। इन्जॉय देयर फेवरेट फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, crispy fried chicken and mouth-watering paratha rolls. Planning a birthday, anniversary or special celebration, they also offer banquet services. Visit Signature Cuisine at Spring Creek and Alma in East Plano or go to signaturecuisine.net. Signature Cuisine, leaving its signature on every taste. चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, वक्त बहुत कम है, और बात कर लेते हैं एक और एक्टर की जो कि 2008 में आए। जी हाँ, 2013 में पहुंच गए हैं, और ये जब आए तो इन्होंने भी वही परसेप्शन दिया हमें कि कुछ तो कमाल होने वाला है। बॉलीवुड में एक बस बन के आया था ये नाम। उन्होंने 2008 में एक फिल्म की जिसका नाम था लव स्टोरी 2050, एंड ये उनका डेब्यू फिल्म था। उनकी सबसे ज़्यादा डिस्कशन हुई उनके लुक्स को लेकर के, क्योंकि लोग ना उनको ऋतिक रोशन से कंपेयर कर रहे थे और स्टारडम भी वैसा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिल्म में प्रियंका चोपड़ा थी, फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट था, बहुत बड़ा प्रोडक्शन था, everything seemed designed to launch a new Bollywood star, but unfortunately love story 2050 audience ko impress nahi kar payi. Uske baad victory aayi, fir what's your rashi aayi, lekin is actor ne wo kamal nahi dikha paya jo iske chehre ko dekh kar ke log soch rahe the ki kamal hoga. Kai baar looks ke upar log dhoondte hain cheeze. So बाद में इन्होंने धिशकाओं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, बट इनिशियल सुपरस्टार बज़ हैड ऑलरेडी डिसअपीयर्ड। और इंटरेस्टिंगली बहुत साल बाद इन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट किया जिसके एक्टिंग के लिए इनको अप्रिसिएशन मिला, स्कूप। मैंने अभी तक इस एक्टर का नाम नहीं लिया, फिल्में बता दी, कोस्टार्स बता दिए, सब कुछ बता दिए, क्योंकि एक्टर का नाम आप बताएंगे मुझे कॉल करके, ताकि मैं आपको दे सकूं आज का गिव अवे। तो फनी पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड है। आप यहाँ जा कर के इनका मज़ेदार मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्ज़ा इन्जॉय कर सकते हैं, फुल ऑन फ्लेवर फिएस्टा। ट्राई द फिएस्टा वेजी फायरी पोलो लोको सी फूड पैक्ड सिनोर कैमरॉन और मोर। आंसर टुडे सिंपल क्वेश्चन, विच इज कौन थे वो एक्टर जो कि बड़े ही प्रॉमिसिंग दिखे थे लव स्टोरी 2050 में, प्रियंका के ऑपोजिट, बहुत सारी फिल्में की, बड़ा प्रोडक्शन हाउस, ऋतिक रोशन से लुक्स कंपेयर किए गए पर चल बिल्कुल नहीं पाए। तो उनके फिल्म के गाने को सुना रही हूँ। स्टूडियो का नंबर है 972-235-5555। कॉल करिए और बताइए कौन है ये एक्टर।

ओ वाव, सो मेनी कॉल्स. मैं सबके नाम लूंगी, पर सबसे पहले उसका नाम ले लेती हूँ जिसको गिव अवे मिल रहा है. गिव अवे गया है दिव्या राघव को. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू दिव्या. ओके, सो दिव्या कॉल, महेश जी कॉल, रौनक कॉल, शीतल कॉल, गीता जी कॉल, जया जी कॉल, वानी कॉल, शिल्पा कॉल, सो मेनी पीपल कॉल एंड गेव द राइट आंसर. लेकिन लकी विनर तो एक ही हो सकता है, तो आज के लिए दिव्या इज द विनर. बट या द एक्टर दैट वी वर टॉकिंग अबाउट वॉज हरमन बावेजा, जिनके लुक्स को ऋतिक से कंपेयर किया गया. बड़ा ही लॉन्च मिला, प्रियंका साथ में थी फिल्म ऐसे इसमें क्या बोलते हैं, जब हमने ट्रेलर्स देखा तो ओ माई गॉड क्या गजब की फिल्म लग रही थी. पहली बार कुछ इतना ग्रैंड और बड़ा दिख रहा था, मतलब प्लेन्स, यू नो, एयर टैक्सीज और पता नहीं क्या फ्यूचरिस्टिक फिल्म, बहुत कुछ, बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, बट चली नहीं. एनीवेज, तो आज हम ऐसे एक्टर्स की बात कर रहे हैं जो बहुत ही प्रॉमिसिंग दिख रहे थे उनके ट्रेलर्स में और जब लॉन्च बड़ा मिला बट चले नहीं. टाए टाए फिश जो बोलते हैं ना, वो हुआ. बट येस, वी आर टॉकिंग अबाउट दोज एक्टर्स, सम ब्यूटिफुल फिल्म्स एंड सम ब्यूटिफुल सॉन्ग्स फ्रॉम देयर मूवीज. दिव्या, यू कैन थैंक यू फॉर गिविंग द आंसर, दैट वॉज रियली क्विक. आपने तुरंत कॉल किया. फन पिज्जा किचन की तरफ से आपको मिलता है $10 का गिफ्ट कार्ड. आप फ्रिस्को लोकेशन से इसको कलेक्ट कर सकती हैं. तो मेरे पास 10 मिनट और बचे हैं. एक्टर्स बहुत सारे हैं, आप लोगों ने बहुत सारे नाम सजेस्ट भी किए हैं, विच आई विल ट्राई ब्रिंगिंग अप इन द नेक्स्ट एपिसोड, मे बी ऑन नेक्स्ट मंडे. बट हम एक और एक्टर की बात कर लेते हैं. एक ऐसे एक्टर जो कि लेजेंडरी फिल्म एक्टर फिरोज खान के बेटे हैं, हम सब जानते हैं कि वो हैं फरदीन खान. सो उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि फिरोज खान साहब ने जब उन्हें लॉन्च किया था तो हमें लगा कि यू नो, अब कुछ वैसा ही मिलने वाला है जैसा 70s-80s की जनता को मिला था. बट उन्होंने अपना जो डेब्यू है वो प्रेम अगन फिल्म से किया था और फिल्म सक्सेसफुल नहीं हुई थी. लेकिन फरदीन को बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, तो लोगों को उनसे उम्मीद बन गई थी. और काफ़ी अच्छी फिल्में की भी उन्होंने. जंगल में बड़ा अच्छा रोल किया, प्यार तूने क्या किया आई उनकी, लव के लिए कुछ भी करेगा, ओम जय जगदीश आई थी, खुशी आई, फिर देव आई और फिर फिदा आई. और फिर 2005 में नो एंट्री आई, जो कि मल्टी स्टारर फिल्म थी और सबको बहुत मज़ा आ रहा था फरदीन को पर्दे पर देखते हुए. और फिल्म भी कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल रही. लेकिन इंटरेस्टिंगली, इतने सारे पॉपुलर फिल्म्स करने के बाद भी, उसका हिस्सा होने के बाद भी, फरदीन खान एक एस्टैब्लिश सोलो सुपरस्टार नहीं हो पाए. हमेशा वो मल्टी स्टारर्स में ही दिखे. टाइम के साथ उन्होंने बॉलीवुड से थोड़ा डिस्टेंस कर लिया और काफ़ी सालों तक स्क्रीन से दूर रहे. बीच में सोशल मीडिया पर उनकी एक फ़ोटो आई जहाँ पर फरदीन यू नो, बहुत ही अनफिट दिख रहे थे, विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द व्यूअर्स कि कोई एक्टर नॉर्मली ऐसे दिख सकते हैं, जहाँ पर उनके दौर के सारे एक्टर्स बिल्कुल हैंडसम, फिट और एकदम डैशिंग दिख रहे थे. वहाँ फरदीन बहुत ज़्यादा, उन्होंने वेट पुट ऑन कर लिया था, तो उसके लिए काफ़ी ट्रोल भी किया गया उनको. लेकिन आज उनकी स्टोरी का एक इंटरेस्टिंग सेकंड चैप्टर है. उन्होंने हीरो इमेज को चेज करने के बजाय कैरेक्टर रोल्स की तरफ शिफ्ट किया है. तो और उन्होंने एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी किया और रिसेंटली हमने उनको फिर से देखा है. ही इज़ लॉस्ट ऑल दैट एक्स्ट्रा वेट एंड ही इज़ लुकिंग डैशिंग एज ऑलवेज. बट येस, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी फरदीन को लेकर के कि फरदीन यू नो सोलो एक पूरी फिल्म को कैरी कर सके, वो कहीं मिसिंग था उनमें. अगर हम उनके साथ मतलब बात करें नो एंट्री की, या फिर बेबी में जहाँ पर वो हैं रितेश और अक्षय के साथ, या नो एंट्री में जहाँ सलमान खान, अनिल कपूर सब लोग हैं, उन फिल्मों में उनके पार्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं. बट पूरे फिल्म को कैरी करने की कैपेसिटी शायद फरदीन में नहीं थी और लोगों को एक्सपेक्टेशन उनसे ज़्यादा थी. सो येस, ही इज़ आई वुड से यू नो बॉलीवुड के वो एक्टर हैं जिनसे उम्मीद थी. और कभी कभी ऐसा होता है कि बॉलीवुड में स्टारडम लूज करना एंड नहीं होता है, वो एक नए बिगनिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ पे फरदीन ने कैरेक्टर रोल्स प्ले करना शुरू किया एंड ही वॉज रियली अप्रिशिएटेड फॉर दैट. बट हिज मूवीज हैड सम अमेजिंग सॉन्ग, सम ब्यूटिफुल लव नंबर्स, जो कि मैं आपके लिए अभी लेकर के आने वाली हूँ. So taking you towards this track from Fardeen ki film, jisme wo Richa Palod ke saath hain. Fardeen and Richa Palod, Kuch Tum Kaho Kuch Hum Kahein Ka, ye bahut hi pyara sa gana. Anu Malik ka music hai isme, isko enjoy kariye.

सो डू यू गाइज रिमेंबर दिस सॉन्ग? इस गाने को पूरा सुनाने के पहले आपको दे देते हैं एक छोटी सी जानकारी. सो प्लानिंग टू बाय योर ड्रीम हाउस और मेक अ स्मार्ट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, देन विजिट गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो प्रेजेंटेड बाय माई स्क्वायर फीट, द बिगेस्ट इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो इन फ्रिस्को. मीट लीडिंग डेवलपर्स फ्रॉम बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे एंड दिल्ली NCR एंड एक्सप्लोर ओवर 200 एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स ऑल अंडर वन रूफ. जॉइन देम ऑन अक्टूबर 10th एंड 11th फ्रॉम 10 AM टू 8 PM एट हयात रीजेंसी फ्रिस्को. फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग, योर परफेक्ट प्रॉपर्टी in India could be waiting for you at Gruh Pravesh India Property Expo. Taking you towards this beautiful song from Fardeen's film.

0: पंजाब बाय पेज थ्री नाउ इन इरविन. स्वाद पंजाब का अंदाज पेज थ्री का.
1: ये लास्ट दिवाली पहना था ये नेहा की शादी में. इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है. हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है.
2: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके.
1: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
2: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ. तथास्तु.
3: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स, ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को. इंडियन अटायर, फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन. That garba was totally worth it. We had so much fun.
4: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
3: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
5: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
6: क्या मतलब?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
8: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
10: Your Honor, हजारों लोगों ने ऐड देखा.
9: Miss Clicks?
11: 100 लोगों ने क्लिक भी किया.
9: Customers कितने आए?
12: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
11: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Fun Asia Network product.

लेड बाय सीपीएस सुधीर पाई, माय टाइम एक्विटी वो जगह है जी जो आपको ऑफर करती है पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजीज फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. चाहे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो, या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, माय टाइम एक्विटी विल हेल्प यू मेक दोज पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशंस जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे. तो माय टाइम एक्विटी को कॉल कीजिए और यू नो देयर इज नो हार्म इन डिस्कसिंग एंड टॉकिंग व्हाट दे हैव टू tell you and what they, how they will guide you. That number is 469-702-1272 unka number, ya phir mytimeequity.com is where you can log on. Aapki pasand, aapki farmaish, filmi farmaish mein leke lungi agle kind of aap keh lijiye 2 ghante tak, 4:30 baje tak aapki farmaishon ka silsila jari rahega. 4:30 se 5 baje tak hamare saath connected honge Sanjay Mathur ji from Mathur Law Offices. So we have lots of beautiful म्यूजिक लाइंड अप फॉर यू. बीच में कुछ मजीद मजे की चीजें, कुछ गिव अवेज और साथ ही साथ आपकी पसंद. ये जी मंडे इज कंप्लीटली आपको डेडिकेट किया है. कई बार आगे हमारे थीम्ड शोज होते हैं तो फरमाइशें इतनी ज्यादा मैं फुलफिल नहीं कर पाती, तो आज का दिन अवेल कीजिए और कॉल करके करिए अपनी फरमाइश. 90s onwards.

अच्छा जी, लंच का टाइम हो रहा है तो आपको एक ऐसी ज़बरदस्त जगह के बारे में बताती हूँ जहाँ मिलेंगी आपको बटर चिकन, जो कि बेहतरीन बटर चिकन है, या फिर बिरयानी खाने का आपका मूड है, पनीर टिक्का, दाल मखनी, मतलब जो भी आपकी पसंद है वो आपको मिलेगा यहाँ, यानी कि तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। और एक बड़ी स्पेशल बात, अब आपको उनका एक स्पेशल चल रहा है उसके बारे में बताते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द फ्लेम आवर ऑफ तंदूरी फ्लेम, और ये है जी मंडे थ्रू थर्सडे, यानी कि आज कल वेंसडे थर्सडे 5 बजे से 8 बजे तक। अब अगर आप वहां जाइएगा तो आपको मिलेंगी 2 एंट्रीज, आप खरीदेंगे जब 2 एंट्रीज तो यू विल गेट एन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री। जी हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री एपेटाइजर मिलेगा आपको व्हेन यू बाय 2 एंट्रीज। तो दिस इज एन अमेजिंग डील, गो चेक देम आउट। 5 PM till 8 PM मंडे थ्रू थर्सडे, tandooriflametx.com is where you can log on and check their menu. देखिए कौन सी appetizer आपको free खानी है जब आप 2 entrees order करेंगे। That website again is tandooriflametx.com. और मुझे call करके जरूर बताइए कि इस वक्त आप किस गाने के बारे में सोच रहे हैं, क्या गाना आपने सुनना है, या कौन सा गाना के lyrics आपके जहन में गुनगुना रहे हैं।

जी हाँ दिव्या, खाने पीने की अभी हम बात कर रहे थे, मैं तंदूरी फ्लेम के बारे में बता रही थी और दिव्या ने रिक्वेस्ट करके कहा कि कुछ खाने पीने का ही गाना हो जाए, बिकॉज ऐसी मजे की बात हुई तो याद आया एकदम से. कौन सा गाना? फ्रॉम द मूवी दावते इश्क. हियर इज द टाइटल ट्रैक फॉर यू.

जी हाँ, सुन रहे थे आप दिव्या की फरमाइश पे ये गाना, और फिल्मी फरमाइश का सिलसिला जारी है। आपकी पसंद के गाने आपके लिए प्ले कर रही हूँ, और अब अगला गाना प्ले करेंगे जी पूर्वा की रिक्वेस्ट पे, एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल सॉन्ग पिक्चराइज्ड ऑन माधुरी दीक्षित एज वेल एज संजय कपूर। फिल्म थी राजा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है या फिर पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपके नेटवर्क में नहीं आता, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, बिकॉज पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इंट्रोड्यूस कर रहा है आपके लिए पैशन हेल्थ डायरेक्ट। फॉर जस्ट $85 अ मंथ आप ये मेंबरशिप ले सकते हैं, विच विल इंक्लूड प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, इसी के साथ टेली हेल्थ भी, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। वो तमाम इंफॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं बाई लॉगिंग ऑन टू देयर वेबसाइट, विच इज पैशन हेल्थ physicians.com। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, passionhealthphysicians.com। नंबर नहीं मतलब उनका जो वेबसाइट है, नंबर अब आपको देने लगी हूँ। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर सकते हैं, कोई और सवाल है आपके जहन में, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कॉल दिस नंबर फॉर ऑल योर क्वेरीज, दैट इज 214-666-6259, 214-666-6259 उनका नंबर, या फिर passionhealthphysicians.com इट इज वेयर यू नीड टू लॉग ऑन। दिस इज नॉट एन इंश्योरेंस प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं है जी ये, सम रिस्ट्रिक्शंस डू अप्लाई, दिस इज अ मेंबरशिप दैट दे आर ऑफरिंग पैशन हेल्थ डायरेक्ट। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हुए इस गाने की तरफ चलते हैं, अर्विंग और फ्रिस्को की लोकेशंस आपके लिए सैटरडेज और संडेज को भी ऑपरेट कर रही हैं, सो फाइंड देम आउट, चेक देम, कॉल देम एंड आस्क मोर क्वेश्चंस। Now this one is going out to Purva. Purva, enjoy.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Hey, Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280, Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
4: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
5: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
4: नहीं।
5: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
4: नहीं।
5: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
4: वो भी नहीं।
5: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
6: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555. Your growth, our strategy.
7: AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
8: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स में सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
14: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
15: इफ यू होल्ड H1B, F1, L1 और एनी अदर नॉन इमिग्रेंट वीजा स्टेटस एंड आर कंसिडरिंग द पाथ टू परमानेंट रेसिडेंसी, कॉन्टेक्ट द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
16: Agar main kahun tumhara cholesterol 300 hai aur blood pressure 160, to kya kahoge?
17: Kya?
18: ड्रीम में रियलिटी चेक अक्सर डर बीमारी का नहीं उसके पकड़े जाने का होता है, लेकिन व्हाट इफ में मत अटके, एनुअल चेकअप करवाइए।
14: विजिट एलन इंटरनल मेडिसिन एंड ट्रस्ट डॉक्टर वनीता एंड हर टीम फॉर एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग्स एंड वेट मैनेजमेंट। न्यू पेशेंट्स विद सेम डे अपॉइंटमेंट्स वेलकम। कॉल 4696499995 और विजिट aimallen.com।
19: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
14: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
19: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
14: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानीज और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
19: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
18: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
14: Marvin Das and Bindas Services present the 6th Annual South Asian Food Festival on 1st November from 12 noon to 8 p.m. at the Sound Venue in Koppal. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors, showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.
20: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Fun Asia Radio.

An absolutely beautiful song requested by Chitra ji. Sun rahe the aap KK ki khubsurat aur mesmerizing aawaz mein. Aapki farmaish chal rahi hai ji. Aapke manpasand radio station pe 972-235-5555 is the number to the studio. Aur aap mujhe call karke kar sakte hain apne manpasand gaane ki request. Acha ji, main lekar aayi hoon aapke liye ek giveaway. Aur ye giveaway aaya hai Fun Pizza Kitchen ki taraf se. Sabse pehle to aapko bataun ji ki Fun Pizza Kitchen ke baare mein hum kai बार बहुत बार बात कर चुके हैं उनके मेन्यू के बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं funpizzakitchen.com ये वो जगह है जहां आपको लॉग ऑन करना है टू चेक आउट मोर अबाउट देयर मेन्यू और अब फन पिज्जा किचन ने एक बिल्कुल नया मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा लाइनअप शुरू किया है तो चाहे आप वेजी लवर्स हैं फिएस्टा वेजी लवर्स हैं या फिर आप चिकन यानी कि पोयो लोको लवर हैं या फिर सी फूड के लवर हैं आपको एक मजे का मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा मिलेगा यहां पे तो जरूर चेकआउट कीजिए Come and check out and see what the hype is all about and you might just end up falling in love with this new lineup of Fun Pizza Kitchen's Mexican inspired pizzas. So, ye to hui ye baat aur ab aapke liye lekar aayi hu $10 ka giveaway aap keh lijiye you will get $10 off your next bill at the Fun Pizza Kitchen's Frisco location. So, agar aap jeetiyega to aapko Frisco location pe jo aapka next bill hoga usse $10 off milega. 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर अच्छा चूंकि पसंद आपकी ही चल रही है तो आप ही की पसंद का के गानों की एक फरमाइश लूंगी तो मुझे ये बताइए कि बॉलीवुड का कौन सा पार्टी नंबर आपका है फेवरेट मतलब कौन सा ऐसा गाना है जो आपको सुनना ही सुनना है अगर आप कहीं यू नो यू आर हैविंग अ डांस पार्टी विद योर फ्रेंड्स यू आर हैविंग सम मजे का फन इवेंट आपका कोई चल रहा है तो आपका दिल करे कि यार ये गाना चलना चाहिए वो गाना मुझे बताइए 972-235-5555 is the number to the studio.

जी हाँ, आप ही के पसंद का गाना पूछा था कि बताइए जब पार्टी सॉन्ग की बात आती है, कोई एक्टिव गाने की बात आती है, तो कौन सा गाना आपके जहन में आता है कि भाई कोई पार्टी है, कोई इवेंट है, तो ये गाना तो प्ले होना ही चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉल्स। और हमारी जो ये फन पिज्जा किचन का $10 का गिव अवे था, यू कैन गेट $10 ऑफ योर नेक्स्ट बिल एट द फ्रिस्को लोकेशन। और हमारी जो आज की लकी विनर है वो है जी शिवानी। शिवानी कॉन्ग्रेचुलेशन, जीत लिया है आपने ये गिव अवे। 2 दिन का हमें टाइम दीजिए नाम और नंबर आपका रेस्टोरेंट पे पहुंचाने के लिए, एंड देन यू विल हैव 7 days टू गो इन अवेल योर $10 ऑफ योर नेक्स्ट बिल। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल यू पीपल जिन्होंने हमें कॉल किया और पार्टिसिपेट किया। इट रियली रियली मैटर्स अ लॉट, एंड दिल से इसका मैं हमेशा आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। जिस सीक्वेंस में आप कॉल करते हैं उसको एक मैथ के नंबर फॉर्मूले में डाला जाता है और फिर आपकी लकी आपके विन का फैसला करती है, वरना मेरी तरफ से तो आप सब हैं absolute winners. Thank you so much. And this is one song that Shivani mentioned that she would love to have or listen to at a party song, as a party song.

इस खूबसूरत गाने के साथ आगे बढ़ रहे हैं जी. और अब जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी शानदार फिल्में जो अक्टूबर के महीने में रिलीज होनी है या पिछले हफ्ते सितंबर के एंड में रिलीज हुई और अब अक्टूबर के आने वाले वीकेंड्स पे रिलीज होंगी. वन ऑफ दोज मूवीज इज, अगर आप फैन हैं तो आपके लिए डेफिनेटली अच्छी खबर है, दृश्यम द कंक्लूजन रिलीज हो चुकी है अक्टूबर 2nd को. और रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पे मचा दिया है इसने तहलका. अराउंड 300 करोड़ का बिजनेस अब तक कर चुकी है. हालांकि अभी इसी हफ्ते यानी कि 2nd अक्टूबर आप कह लीजिए फ्राइडे को रिलीज हुई है. सो इट इज ऑफ कोर्स वन ऑफ दोज मूवीज दैट वी ऑल लव टू वॉच. अजय देवगन, जयदीप अहलावत, तब्बू, श्रिया सरन, साथ ही साथ रजत कपूर, एक आउटस्टैंडिंग कास्ट इस फिल्म की. एंड अपेरेंटली इट इज डूइंग सुपरबली इन द थिएटर्स. तो अगर आप दृश्यम के फैन हैं तो गुड न्यूज फॉर यू, दृश्यम द कंक्लूजन इज नाउ इन थिएटर्स प्लेइंग फॉर यू. चलिए फिर दृश्यम का ये गाना सुनते हैं. दिस इज फ्रॉम द कंक्लूजन.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: That garba was totally worth it. We had so much fun.
2: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
1: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
3: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
4: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
5: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
4: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy।
5: Thousands की लाइफ बदली उनकी divine guidance से। Now it's your turn। समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और visit astrologerishwar.com।
6: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
7: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
6: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
7: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट। फ्लोर्स क्लीन,
8: चेक।
7: विंडोज क्लीन,
8: चेक।
7: किचन क्लीन,
8: चेक।
7: एयर डक्ट्स क्लीन।
8: वेट, एयर डक्ट्स भी क्लीन करना होता है?
9: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush, plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
3: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
10: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
11: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
12: Elwing walo, dhyan se suno. Ye sirf music nahi, hint hai.
13: Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
14: ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಆರ್ ಎಂದ ಟಾಪ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೂಫ್ ಕೆಳಗೆ. 200+ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಾಂಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10th and 11th. ಸ್ಥಳ ಹಯಾತ್ ರೀಜೆನ್ಸಿ ಫ್ರಿಸ್ಕೋ. ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಾತ್ರಿ 8 ವರೆಗೆ. ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ, ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
15: I am Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.
16: Dallas ki dhadkan 104.9 FM Funasia Radio.

104.9 FM फनीचर रेडियो सुन रहे हैं आप. कनेक्टेड हैं आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण के साथ. मैं आपके साथ मौजूद रहती हूँ 2:30 बजे से 5 बजे तक एवरी डे मंडे थ्रू फ्राइडे. 9722355555 इज द नंबर जहां आप मुझे कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन बी कनेक्टेड विद मी. स्टे कनेक्टेड विद मी एज वेल. और मंडे इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू यू. आप ही की पसंद, आपकी फरमाइशें, आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पर आपकी मनपसंद आरजे लेकर आई हैं. आप मुझे कॉल कर सकते हैं 4:30 बजे तक. आप कह लीजिए 3:40 तक फरमाइशों का सिलसिला जारी रहेगा. 4:30 से लेके और 5 o'clock तक हमारे साथ संजय माथुर जी फ्रॉम माथुर लॉ ऑफिसर्स कनेक्टेड होंगे. ही विल बी टेकिंग योर कॉल्स लाइव. सो डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन टू दैट अमेजिंग सेगमेंट जो संजय माथुर जी आपके लिए लेकर आते हैं. इट्स एन अमेजिंग कम्युनिटी सर्विस दैट ही डज एंड ही विल बी हेयर टू आंसर योर क्वेश्चंस लाइव. अच्छा, आपको मैंने ब्रेक पे जाते हुए बताया कि दृश्यम मूवी रिलीज हो गई 2 अक्टूबर को और काफी ज्यादा हिट हो रही है. सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं. और जी, ये प्लॉट ऑफ द फिल्म कनेक्ट्स विद दी पुरानी फिल्मों के साथ कनेक्ट करा है इन्होंने. और बड़े ही अच्छे तरीके से जो रिव्यूज मैं पढ़ रही हूँ, मैंने अब तक नहीं देखी, लेकिन जो रिव्यूज या जो लोग बात कर रहे हैं वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है. और ये गाना जो मैंने आपके लिए ब्रेक पे जाने से पहले पेश किया था, ये लकी अली की आवाज में आपके लिए था. एक और मूवी जो कि 2 अक्टूबर को रिलीज हुई, वो थिएटर्स में नहीं हुई, Z5 पे ये मूवी रिलीज हुई है आई थिंक. एंड दिस इज पूजा मेरी जान, जिसमें हमें नजर आए मृणाल ठाकुर, हुमा कुरैशी, विक्रम सिंह चौहान, विजय राज और राजेश जैस. ये एक मूवी रिलीज हुई है जी, जो कि 2026 की हिंदी लैंग्वेज क्राइम थ्रिलर फिल्म है, डायरेक्टेड बाय नवजोत गुलाटी. तो अगर आपने ये मूवी देखनी है तो जरूर चेकआउट कीजिए. ये भी आपके लिए Z5 पर अवेलेबल है. What else is available for you? एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग मूवी अब रिलीज होने वाली है 10 दिन बाद, जिसका मैं बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी इस गाने के उस पार.

0: और अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, कुछ अमेजिंग रील्स बनाना चाहते हैं, तो फनएशिया नेटवर्क नाउ ब्रिंग्स इट्स मीडिया एक्सपर्टीज टू योर सोशल मीडिया. जी हाँ, विद रिलेटिव मीडिया, फ्रॉम एंगेजिंग रील्स एंड ग्राफिक्स टू कैप्शंस, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन और साथ ही साथ एम्प्लीफिकेशन थ्रू फनएशिया रेडियो डिजिटल as well as community platforms. Relative Media aapko deta hai, aapke brand ko deta hai a complete content solution. You can give us a call at this number, Relative Media with Funasia ya Funasia Network ka jo Relative Media hai, aap usko call kar sakte hain aur dekhiye apni baat bataiye aapko kya chahiye, what are you looking for, and they will be able to guide you and help you. That number is 469-424-3188. This is the number you can call, ask any questions or book your content audit today. This is Relative Media powered by FunAsia Network.
1: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.

और अब मैं आपको बताती चलूं कि कौन सी फिल्म है जिसका मैं भी डेफिनेटली इंतजार कर रही हूं, एंड दिस इज अ मूवी जिसमें यामी गौतम हनन नजर आएंगी. यामी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस और जब भी वो कोई फिल्म करती हैं तो उसको एक चांस तो जरूर देना चाहिए बिकॉज शी ऑलवेज पिक्स गुड स्टोरीज एंड शी परफॉर्म्स रियली रियली वेल. अच्छा, ये जो इनकी नई, अभी आपने पिछली उनकी हक भी देखी होगी, दैट वाज एन आउटस्टैंडिंग फिल्म. अभी इनकी जो नई मूवी आने वाली है, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट मूवी फ्रॉम व्हाट शी हैज ऑलरेडी डन, एंड दैट मूवी इज नई नवेली. ये एक कॉमेडी हॉरर फिल्म होने वाली है जिसे हिमांशु शर्मा ने लिखा है एंड दिव्या निधि शर्मा ने, और इसे बालाजी मोहन ने डायरेक्ट किया है अंडर द बैनर ऑफ एमेजॉन MGM स्टूडियोज. अच्छा जी, इसमें हमें नजर आ रहे हैं यामी गौतम और साथ आदिनाथ कोठारे, और यामी जो है वो और भी ज्यादा प्यारी लग रही है इस फिल्म में. उसका एक गाना मैं अभी आपके लिए प्ले करूंगी. The film is going to release on 16th of October. Aaj hai 5th of October, so around 10 days baad ye film release hogi. And aapko batate chalein ke initially jo hai wo Kriti Sanon report ki ja rahi thi ke is film ki female lead jo hai wo Kriti Sanon karengi. Later in October 2025 it was confirmed ke Kriti Sanon is film ka hissa nahi banengi apne busy schedule ki wajah se, aur kyunki unka wo Tere Ishq Mein aur Cocktail 2 ki making chal rahi thi. तो फिर जनवरी 2026 में यामी गौतम को फाइनलाइज किया गया इस रोल के लिए, और मेरा ख्याल है 7 अप्रैल से इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी 2026, और अब बस 16 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है. इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट यामी हैज इन स्टोर फॉर अस दिस टाइम. हियर इज अ ब्यूटिफुल नंबर फ्रॉम दिस फिल्म. दिस इज भाभी तबाही.

Well, that was taken from the movie Nai Naveli, जो कि नई नवेली फिल्म आने वाली है यामी गौतम की और अक्टूबर 16 को आपके और मेरे लिए रिलीज होने वाली है. अच्छा जी, अगला गाना, चूंकि फिल्मी फरमाइश चल रहा है और सफ़ी की फरमाइश पे ये अगला गाना आपके लिए प्ले कर रही हूँ. इस गाने के साथ हम जाएंगे ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आकर मैं आपको बताऊंगी एक और फिल्म जो कि 16 अक्टूबर को रिलीज हो रही है और एक वेब सीरीज के बारे में बात करेंगे जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई. उसमें कौन से सितारे हमें देखने को मिले और कहानी कैसी थी और किसने उस मूवी में बाजी मारी अकॉर्डिंग टू मी, जो कि लगी हीरोइन से भी ज्यादा अच्छी. ये सब सुनने के लिए आपको क्या करना है, बने रहना है यहाँ राइट हियर ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो. सफी, दिस इज फॉर यू.

और अगर इस फेस्टिव सीजन आप खरीदना चाहते हैं कोई ज्वेलरी, एनीथिंग, आप कोई शादी ब्याह का इवेंट आ रहा है या यू जस्ट वांट टू बाय समथिंग फॉर योरसेल्फ या फिर कोई ब्राइडल कलेक्शन या कोई और स्पेशल ओकेजन, तो पीएमजे ज्वेल्स आपके लिए लेकर आया है 60 ईयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सलेंस एंड टाइमलेस Indian craftsmanship. They are now open in Frisco, located on Main Street. So, zarur visit kijiye ji PMJ Jewels. This is where har piece jo hai, jo main personally maine dekha ki bahut hi khoobsurat pieces hain. Aisa lagta hai jaise har piece ke saath koi kahani judi hui hai. So, aap bhi jaiye, zarur visit kijiye. Main Street, Frisco mein located hain. Aur jaake dekhiye ki kaisi maze ki feeling aati hai unke. Different pieces ko dekke aur unke showroom ko dekke. Do check them out. This is PMJ Jewels for you. Aur ab ji break pe jaate hue aapko bata rahi thi ke ek aisi web series release hui Netflix pe jisme lead star to thi Pariniti Chopra. लेकिन बाजी मारी मेरे हिसाब से जेनिफर विंगेट ने. जी हाँ, शक टीवी सीरीज जो है, वेब सीरीज, ये रिलीज हो चुकी है और नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है पिछले हफ्ते या शायद खालिबन उससे पिछले हफ्ते कुछ इसी तरह रिलीज हुई है. तो आप हाँ 24 सितंबर, जी हाँ डेट मैं आपके लिए ढूंढ रही थी, 24 सितंबर को रिलीज हुई. मैंने इस सीरीज को देखा. वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई आई वॉच दैट मूवी और दैट सीरीज इज बिकॉज ऑफ जेनिफर विंगेट, बिकॉज आई फील दैट जेनिफर विंगेट इज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एक्ट्रेस. और सिर्फ ये वेब सीरीज की बात नहीं है, इससे पहले जब जेनिफर टीवी सीरीज में आती थी, जैसे कि उन्होंने कई सारे ड्रामे किए हैं, रोमांटिक ड्रामे भी किए हैं, बड़े उनका बड़े पॉपुलर ड्रामे रहे हैं. हर्षद चोपड़ा के साथ उनका एक ड्रामा बहुत पॉपुलर था. उससे पहले उन्होंने सरस्वती चंद्र किया, जो संजय लीला बंसाली जी की प्रोडक्शन टीम ने बनाया था. एंड देर आर मेनी मोर ब्यूटिफुल ड्रामाज दैट ही हैज वर्कड इन. अब उसके जो लास्ट ड्रामा था उनका, वो एक ऐसा था जिसमें वो एक किसी तरह की साइकोटिक किरदार सा उन्होंने अदा किया था, जिनसे आप चाहो भी तो हेट नहीं कर सकते और चाहो भी तो लाइक नहीं कर सकते, कुछ इस तरह का रोल था. और इस मूवी में, इस टीवी सीरीज में भी उनका कुछ ऐसा ही रोल है वेब सीरीज में. एंड आई हैव टू से शी वॉज लुकिंग रैविशिंग, शी वॉज एक्टिंग वे बेटर देन एनी अदर वन इन द शो. एंड आई थिंक के परिणीता को कम्प्लीटली ओवर शेडो कर दिया जेनिफर विंगेट ने. बट दैट इज माई ओपिनियन, टू ईच देयर ओन. आप जरूर चेकआउट कीजिए इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग. मेरे ख्याल 7 एपिसोड हैं इस ड्रामे की और आप देख सकते हैं ऐसे नेटफ्लिक्स पे. तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड वॉच फॉर इफ नोबडी एल्स देन द क्रेजी साइकोटिक ब्यूटिफुल एक्टिंग ऑफ जेनिफर विंगेट.

अच्छा जी, इसी के साथ एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ. इफ़ यू आर ड्रीमिंग ऑफ ओनिंग अ होम इन इंडिया, या फिर आप ढूंढ रहे हैं योर नेक्स्ट स्मार्ट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, तो देन डू नॉट मिस गृह प्रवेश इंडिया Property Expo presented by My Square Feet. Ye hai ji the biggest India Property Expo that is happening in Frisco. Aur ye aapka chance hai to meet the leading developers from Bengaluru and Hyderabad and Chennai and Pune and Mumbai as well as Delhi, and explore aap kar sakte hain 200 plus exciting property projects jo ke sare aapke liye jama honge under one roof with this Grah Pravesh India Property Expo. To chahe aap apne next ड्रीम होम की तलाश में है या फिर यू लुकिंग फॉर अ सेकंड होम और एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन इंडिया, दिस इज अ प्लेस दैट यू कैन गो एंड विजिट योर एंड एक्सप्लोर योर ऑप्शंस. तो कब हो रहा है जी? दिस इज हैपनिंग ऑन अक्टूबर 10th एंड 11th फ्रॉम 10 AM टिल 8 PM एट हयात रीजेंसी फ्रिस्को. एक बार फिर आप अपने कैलेंडर्स में नोट कर लीजिए अक्टूबर 10th और 11th को फ्रॉम 10 AM टिल 8 PM इन द इवनिंग हयात रीजेंसी फ्रिस्को में हो रहा है. और जो बेस्ट पार्ट है इस इवेंट की वो ये है कि आपको पार्किंग का कोई पैसे नहीं देने, एब्सोल्युटली फ्री पार्किंग है. सो मार्क योर कैलेंडर्स, ब्रिंग योर फैमिली, ब्रिंग योर फ्रेंड्स, हू एवर इज लुकिंग टू मेक दैट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो, योर परफेक्ट प्रॉपर्टी इन इंडिया could be waiting for you. All you have to do is join them this 10th and 11th of October, 10 a.m. till 8 p.m. at Hyatt Regency Frisco.

0: इसी के साथ बढ़ रहे हैं हम एक ब्रेक की तरफ. बिफोर दैट लेट मी गिव यू अ क्विक ट्रैफिक अपडेट. इफ यू आर ऑन द रोड गोइंग समवेयर, देयर इज वन इंसिडेंट दैट आई कैन सी ऑन IH30 टुवर्ड्स FM551 ईस्ट बाउंड, जिसकी वजह से वन लेन इज ब्लॉक्ड. द सेवेरिटी ऑफ दिस इंसिडेंट इज रिपोर्टेड हाई, एम्बुलेंस हैज बीन कॉल्ड. तो कुछ मेजर इंसिडेंट है यहाँ पे और अभी अभी वेरीफाई हुआ है ये, इसीलिए आपको यहाँ पे काफी बैकअप देखने को मिल सकता है फॉर द नेक्स्ट 20-30 minutes. सो प्लीज बी केयरफुल इफ यू आर रीचिंग देयर. दैट्स प्रीटी मच ऑल दैट आई कैन सी. देयर इज एन इंसिडेंट दैट वॉज रिपोर्टेड अबाउट 5 hours अगो एट US 75 टूवर्ड्स मिड पार्क रोड, जिसकी वजह से 8 out of 10 लेन्स वर ब्लॉक. सो इट वॉज अ मेजर इंसिडेंट. अभी भी वहां कुछ बैकअप और कुछ रोड ब्लॉकेजेस नजर आ रहे हैं, तो प्लीज बी केयरफुल विद दैट. इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आकर आई विल कनेक्ट यू विद आर माथुर लॉ ऑफिसर्स सेगमेंट. संजय माथुर जी विल बी लाइव आंसरिंग योर क्वेश्चंस. अगर आप कॉल करें और मैं आपको होल्ड पे डालूं और आपको उनकी आवाज आ रही है कि यू नो ही इज आंसरिंग सम प्रीवियस क्वेश्चन, तो अपनी लाइन में जगह को बरकरार रखिएगा. डू नॉट ड्रॉप द कॉल, होल्ड योर स्पॉट बिकॉज यू विल बी नेक्स्ट इन लाइन टू आस्क योर क्वेश्चन. आई विल See you after the break. Keep those calls coming. Thank you so much and stay tuned.
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
4: अरे सारे तो सेम है.
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
4: ओ हाँ, ये तो अलग है.
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: Buying a home comes with a lot of firsts. Your first walkthrough, your first offer, your first, they accepted. But there's one first you definitely don't want. Your first title problem. Before the keys are yours, make sure everything behind them is clear. With First United Texas Title, get the confidence of a smooth title and closing process. So the only surprise at your new home is what the neighbors bring over. First United Texas Title. Close with confidence. Own with peace of mind. Call 972-897-1530 or visit www.firstunitedtexastitle.com.
7: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
8: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
7: कैसे?
8: पेज 3 ईटरी?
7: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
8: डूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
7: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
9: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
10: सुनो सुनो सुनो सारे मैकनी वाले, सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म. सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर.
11: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह. कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259.
12: दिल की बात किससे कहें?
13: पंडित गुरुदेव से. 35 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ पंडित गुरुदेव करते हैं कुंडली रीडिंग, बर्थ चार्ट एनालिसिस, पाम रीडिंग और फेस रीडिंग, ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी रिमूवल में एक्सपर्टाइज. प्यार, शादी या रिश्तों की उलझन हो तो पर्सनल गाइडेंस लीजिए. कॉल 4695811777. दैट्स 4695811777. पंडित गुरुदेव, आइए अपनी बात कहिए.
14: वेलकम टू द शादी मेमोरी टेस्ट। रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। डेकोरेशंस का कलर,
15: नेक्स्ट क्वेश्चन।
14: ब्राइड की एंट्री सॉन्ग,
15: याद नहीं।
14: बफे में क्या था?
15: चना पापड़ी चाट, बिहारी कबाब, दिल्ली निहारी, अचारी चिकन, मटन बिरयानी।
13: शादी में बाकी डिटेल्स भूल सकते हैं लेकिन खाना कभी नहीं। गैदरिंग्स 50 की हो या 500 गेस्ट के लिए, चूज सिग्नेचर कुजीन्स, कस्टमाइज्ड केटरिंग, लाइव कुकिंग स्टेशंस एंड प्रोफेशनल सर्विस। कॉल 972-905-5449। सिग्नेचर कुजीन, द टेस्ट योर गेस्ट्स विल रिमेम्बर।
16: अजी सुनते हो?
15: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
11: The OG of tax planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
17: Stop! Festive fashion check. नवरात्रे के outfits ready है?
18: दो चनिया चोली है, mix and match कर लूँगी।
17: Fashion violation. Same outfit को 9 रात overtime.
18: तो solution?
19: Indian ethnic wear by Jyotika Patel. Explore a stunning collection of stylish, contemporary chaniya cholis for a new look every day in Navratri. Planning a wedding? Discover quality wedding and customized bridal wear for men and women at great prices. Call 945-444-2194 or explore jyotikapateldesigns.com. Indian ethnic wear by Jyotika Patel. Designed for celebrations.
20: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Funasia Radio.
21: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, Funasia 104.9 FM.

May you be surrounded by the love of your family and friends, and may you experience abundance in all areas of your life. I wish that for all of you. A very warm welcome to the listeners of Fun Asia Radio. Once again on the airwaves of Fun Asia 104.9 FM. This is your host, Banda Bindas, Marvin Das. Monday to Thursday, 5 se 7. मैं रहता हूँ जी आपके साथ साथ एंड आफ्टर अ टू डे ब्रेक विच आई टुक लास्ट वीक आई एम बैक एंटरटेन करने आया हूँ जी आपको. कोशिश करेंगे कि कुछ प्यारे से गाने, कुछ प्यारी बातें आपके साथ करते हुए चले. इट्स 5:13 इन द स्टूडियो क्लॉक, 5:13. दैट मीन्स इट्स टाइम टू प्ले सम म्यूजिक बिफोर वी टॉक अ लिटल मोर. क्यों ना शुरुआत करें इस गाने से. हियर वी गो.

जिंदगी इट इज इंडीड दो पल की है यार, इसमें मजे लो. यू नो, दो जो दोस्त मिलते हैं उनके साथ अच्छा संगठन बनाओ, यारियों को मजबूत रखो, और दोस्तियां और जो रिश्तेदारी है ना वो निभाने से निभती है. ये नहीं कि भाई उसने फोन नहीं किया तो मैं क्यों करूं, फिर तो ईगो आ गई ना, फिर दोस्ती कहाँ हुई. दोस्ती तो वो होती है जो बिना किसी वजह से हो और बिना किसी जरूरत के हो. दैट इज कॉल्ड ट्रू फ्रेंडशिप एंड दैट इज वॉट आई वॉन्ट यू टू डू. मेक योर फ्रेंड्स, मेक दोज मेमोरीज, क्योंकि ज़िंदगी में चाहे वो दोस्त ना रहे, उनकी यादें जो हैं और उनकी बातें जो हैं वो हमेशा आपके साथ रहेंगी. सो मेक दोज नाइस. दिस पार्ट ऑफ द शो इज़ ब्रॉट यू बाय अटर्नी ओमर ख्वाजा एंड ही इज आर ड्राइव टाइम स्पॉन्सर, जो कि आपकी मदद करते हैं टू फाइट दोज बिग इंश्योरेंस कंपनीज दैट से नहीं भाई हम तो आपको कुछ नहीं देंगे. दीज गाइज कम इन एंड दे मेक श्योर दैट दे फाइट फॉर योर जस्ट राइट्स. जैसे कि अगर आपकी गाड़ी का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाएंगे, अगर आपका मेडिकल बिल्स है दिल गेट दैट टेकन केयर ऑफ, एंड इफ यू हैव जॉब लॉस, मतलब अगर आपको काम पे नहीं जा सके आप बिकॉज ऑफ योर इंजरी, दे विल ऑल्सो गेट यू कॉम्पनसेटेड फॉर दैट. तो आई थिंक विन विन है, और सबसे अच्छी बात है नो विन नो फी इज हाउ दे वर्क एंड दे मेक श्योर यूजली कि आप जीते ही जीते. हियर वी गो विद द नेक्स्ट ट्रैक. इसके बाद लेते हैं छोटा सा ब्रेक.

0: Hey, Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280, Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
5: अरे यार, घर मिल गया।
6: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
7: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
6: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
7: बिल्कुल, विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
8: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
9: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
10: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
11: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
12: Subah Drive Pay.
13: You're listening to 104.9 FM Funny Share Radio.
14: Dopahar phone par.
15: I don't listen to Spotify. I listen to Funny Share Radio.
16: Shaam ko ghar par.
17: You are listening to Fun Asia Radio.
18: Your customers are everywhere. तो आपका बिजनेस सिर्फ एक जगह एडवर्टाइज क्यों हो?
19: Fun Asia Network के साथ कस्टमर्स तक पहुँचे रेडियो से डिजिटल तक. And with Smart Reach AI, take your business to local customers while tracking calls, bookings or visits. A 360-degree advertising solution for your business. So customers can hear about you, see you and connect with you.
18: To advertise, call 469-424-3188 or email sales@funasia.net.
19: Fun Asia Network. Be heard, be seen, be chosen.
20: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

दरअसल ना संस्कार तो मुझमें बहुत हैं, बहुत कूट कूट के भरे। बस मसला इतना सा है कि ज्यादा बारीक पिस गए दिखाई नहीं देते किसी को।

0: एक्चुअली वो संस्कार जब मम्मी थी ना, मम्मी की वजह से संस्कार आने थे ना मेरे में, तो मम्मी और सास की लड़ाई होगी मेरी दादी की। अब मम्मी ने जब संस्कार के मसाले कूट रही थी, वो धक धक धक ज्यादा ही फाइन पिस गए। तो अगर दिखाई नहीं देते आपको संस्कार, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करते, वो हैं हैं, बारीकी से देखोगे तब नजर आएंगे। वेलकम बैक टू योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो राइट हियर ऑन फन एशिया। इट इज 5:25 इन द स्टूडियो क्लॉक, यानी कि 5:25 स्टूडियो की घड़ी में। आई एम गोइंग टू बी विद यू टिल 7 o'clock। अक्टूबर की 5 तारीख है जी, एंड आई लव दिस लास्ट वीकेंड इंडिया ने जो किया जी इन द एशियन गेम्स फाइनल, दैट वाज ग्रेट। 211/6 इज व्हाट इंडिया मेड, एंड आई वुड लव टू कांग्रेचुलेट अभिषेक शर्मा। उन्होंने पिछली गेम में भी कमाल किया था, इसमें भी व्हाट अ गेम ही प्लेड, 61/28 गेटिंग अस टू दैट किक स्टार्ट। तिलक वर्मा 51/22, एंड यू नो व्हाट, शिवम दुबे इज समबडी आई रिलाई ऑन, क्योंकि इन्होंने जब भी सिचुएशन गंभीर हुई है या व्हेन वी नीडेड हिम टू शाइन, ही ऑलवेज डिड। 27/15 फॉर हिम देयर, एंड ब्रॉट द इंडिया टोटल टू 211/6। Pakistan could only gear up 192 and for 6 in their 20 overs. So, gold aagaya ji Hindustan ke paas. And if we talk about the game that happened between West Indies and India, usme India haar gaya, but that's okay. The series was won. And you know what, is series mein jo humne ballebazi ki, I think that was definitely qabil-e-tareef, kyunki itna achha score जो इंडिया ने बनाया इन ऑल द गेम्स। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू टॉक अबाउट द गेम जिसमें 400 प्लस भी हमने चेस किया, एंड आई थिंक दैट वाज डेफिनेटली कूडोज टू द इंडियन टीम। चलें बातें बाद में, आगे चलते हैं विद द गानों की लिस्ट दैट आई हैव लाइंड अप फॉर यू हियर। दिस इज योर इवनिंग शो।
1: तुम्हारी नहीं मेरी आस्था तो है, मुझे पूरा विश्वास है कि छठी मैया हमें आशीर्वाद जरूर देंगी।

ओ मन्नू, ओ मन्नू, ओ मन्नू, कमियां किसमें नहीं है दोस्तों, है ना। आपको भी किसी ने बोला होगा तेरे पे ये नहीं है, तेरे में वो नहीं है। इट्स ओके यार, मेरे पास भी कमी है, बस 20 करोड़ रुपए की कमी है। वो पूरी हो जाए तो मैं बोलूंगा कि हाँ, कहीं कमियां पूरी हो जाती हैं, बट इट्स ओके। कमियां हैं तो क्या हुआ यार, जिंदगी तो है ना, इसी को जियो। दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट यू बाय हिमालयन बाजार, लोकेटेड इन ग्रैंड प्रेरी। आपके लिए एक बहुत ही कन्वीनियंट स्टोर खुल चुका है जी, एंड दिस इज राइट ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ हाईवे 360, हाईवे 20। इस पे क्या क्या मिलता है जी? ऑफकोर्स एज अ ग्रोसरी स्टोर यू गेट एवरी थिंग दैट यू एक्सपेक्ट, चाहे वो फ्रोजन आयल की चीजें हो या फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश प्रोड्यूस हो। उसके साथ साथ हलाल मीट इज अवेलेबल, चिकन उसके साथ, यू नो, गोट एंड एवरीथिंग एल्स। एंड फॉर द नेपालीज पीपल दैट लव देयर वाटर बफ, दे हैव दैट एज वेल। शाम को 5 बजे के बाद आपको मिलता है जी वहां पे बढ़िया टी, स्नैक्स एंड मोर। एंड नाउ दे हैव अ कैफे दैट इज ओपनड अप एज वेल, जिसमें आपको मोमो एंड मेनी अदर ऑथेंटिक नेपालीज आइटम्स खाने को मिलेंगी। सो मेक श्योर टू ट्राई वन प्लेस इन ग्रैंड प्रेरी विच इज कॉल्ड हिमालयन बाजार। और हाँ, अपने आप फोन से गूगल जरूर कीजिएगा टू सी हाउ फार यू आर, बिकॉज अगर आप 5 माइल के रेडियस में हैं, देन यू विल गेट योर ग्रोसरीज डिलीवर्ड टू योर डोर विदाउट एनी फी, एंड आई थिंक दैट इज एक्सीलेंट। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा घर ही सामान आएगा। टेकिंग यू टू अनदर लवली नंबर, एंड दिस वन इज रणबीर के साथ कटरीना, दैट जोड़ी जो कि हम मतलब फुलफिल होते नहीं देख पाए, बट ऑन द स्क्रीन वी लव देम टुगेदर। अजब प्रेम की गजब कहानी।

in the slow motion is what they mean, which is again Katrina Kaif and Sallu Bhaiya. सल्लू भैया नया लुक देखा आपने सल्लू भैया का बिल्कुल टाइट लुक लेके आया यार जबरदस्त मजा आ गया मुझे देखने का एंड आई थिंक बिग बॉस में गुस्से में भी आ गए थे कहते क्या मतलब है कर लो ट्रोल ये लो शर्ट उतार दी पर अभी भी यार सल्लू भाई गॉट इट हां एक गाना फिर लेते हैं ब्रेक

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Kahan gaya? Kahan rakha tha?
7: Suno na, mera wo wala set kahan hai?
8: Kaun sa?
7: Arre, wo gold wala, thoda traditional, usme polki bhi hai.
8: अरे सारे तो सेम है.
7: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला.
8: ओ हाँ, ये तो अलग है.
9: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
10: पार से आप स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कल हिंदी हिंदी बोल.
11: यू नो माय वॉइस ऑन द रेडियो, नाउ लेट मी बी अ वॉइस यू कैन ट्रस्ट इन रियल एस्टेट. मैं हूँ नवनीता खेमका, रियल्टर विद केलर विलियम्स रियल्टी. बाइंग, मूविंग और सेलिंग अ होम, आई ब्रिंग मार्केट नॉलेज, क्रिएटिव मार्केटिंग एंड पर्सनल कमिटमेंट टू योर जर्नी. बिकॉज टू मी रियल एस्टेट इजंट जस्ट अबाउट प्रॉपर्टीज, इट्स अबाउट यू मेरे दोस्तों, योर पॉसिबिलिटीज एंड योर न्यू बिगिनिंग्स. Every home has a story. Let's create yours together.
9: Call Namrita Khemka at 347-449-4242.
10: Phone uthaiye, number dabaiye.
11: 347-449-4242.
12: That garba was totally worth it. We had so much fun.
13: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
12: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
14: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
15: Buying a home comes with a lot of firsts. Your first walkthrough, your first offer, your first, they accepted. But there's one first you definitely don't want. Your first title problem. Before the keys are yours, make sure everything behind them is clear. With First United Texas Title, get the confidence of a smooth title and closing process. So the only surprise at your new home is what the neighbors bring over. First United Texas Title. Close with confidence. Own with peace of mind. Call 972-897-1530 or visit www.firstunitedtexastitle.com.
16: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
17: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
16: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
17: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
16: सच में? सब संभालेंगे.
17: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
9: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
18: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
19: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
18: नहीं.
19: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
18: नहीं.
19: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
18: वो भी नहीं.
19: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
9: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी.
15: AG Fintechs, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
20: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
21: कस्टमर्स हिंदी में मिलते हैं, तेलुगु में भी, पंजाबी में भी और तमिल में भी, तो ऐड सिर्फ एक लैंग्वेज में क्यों?
15: वन एशिया नेटवर्क के साथ रीच कीजिए DFW के मल्टीपल देसीज को एक ही पावरफुल नेटवर्क पर. आज ही कॉल करें 4694243188 और ईमेल sales@funasia.net. फन एशिया नेटवर्क, वन नेटवर्क, मेनी लैंग्वेजेस एंड मैक्सिमम रीच.

किनिया किनिया यार तू गल्ला करता है। देखो बातें तो हम भी कर सकते हैं, आप भी बहुत सारी कर सकते हो, बट जो वकील कर सकता है वो सिर्फ वकील कर सकता है भैया। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर इमिग्रेशन केसेस, सीमा मेहता लॉ फर्म इज द वन दैट डील्स इन H-1B, F-1, L-1 एंड एनी अदर नॉन इमिग्रेंट वीजा। एंड इफ यू आर प्लानिंग योर पाथ टू द US, देन ऑफ कोर्स उसके पास EB-5 प्रोग्राम है, व्हिच शी कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एंड अटॉर्नी सीमा मेहता हैज बीन इन DFW फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत सालों से एक ही फील्ड में है, दैट इज एक्सपर्टीज ऑफ immigration, including your EB-5 investor visa. Give them a call or just simply look them up on the website, which is seemamehtalawfirm.com, seemamehtalawfirm.com, or you can send an email if you have any questions. Wo aap dalenge ji info@seemamehtalawfirm.com. That's info@seemamehtalawfirm.com. Ek gana aur laga raha hoon, and aapko ye bhi bata dun ke right after the 6:20 break, hum khelenge ji ek giveaway contest, which is going to be with Barista, and this time you can get $20 gift coupon from them. They are the newest biryani sensation in Frisco after coming from Denton.

0: taken from मतलब वो लाल पीली अखियां. अब देखो ये मुझे समझ नहीं आई बात के, देखो आंखें होती हैं खूबसूरत, हाँ आंखें नशीली होती हैं, आंखें काली होती हैं, ब्राउन होती है, ग्रीन तक देखी हैं, ब्लू तक देखी हैं, बट ये लाल पीली अखियां क्या मतलब? मतलब आजकल गाना बनाने वाले कुछ भी जहां जो फिट होता है बस वो फिट होना चाहिए, थोड़ी सी जगह मिले एडजस्ट हो जाओ. मतलब ये तो हिंदुस्तानी बस वाला सिस्टम हो गया. और ये हम हिंदुस्तानियों में जो गिफ्ट है ना वो किसी और में नहीं है भाई. हम भरी हुई बस में भी उतने ही बंदे जितने बस में बैठे हैं उससे डबल एडजस्ट कर सकते हैं. कैसे भाई साहब? थोड़ा सा देखना बहन जी, थोड़ा सा देखना. मतलब देखते ही देखते यार जगह बन ही जाती है. एनीवे आप लोग अपने पेट में जगह बना लीजिए क्योंकि ब्रेक के उस पार जब मैं आऊंगा देन आई विल गिव यू अ $20 गिफ्ट कूपन चांस फॉर यू टू विन फ्रॉम बरिस्ता एंड दैट इज द न्यूएस्ट सेंसेशन. जैसे मैंने कहा बिरयानी की आ रही है टाउन में एंड आई हैव हैड द बिरयानी एंड आई थिंक इट्स डेफिनेटली समथिंग यू शुड ट्राई. घर लेना हो तो नाम याद रखिएगा नवनीता खेमखा, जिनको आप 5 से 7 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट सुनते हैं फ्राइडे को. शी इज नाउ अ रियल्टर विद केलर विलियम एंड आई थिंक विद हर स्किल सेट्स वुड बी ऑफ कोर्स शी नोज मार्केटिंग, शी इज with Fanasia for quite some time. बहुत creative ideas हैं उनके, knowledge काफी रखती हैं अपनी field में and she'll give you personalized guidance for the home that you want to make your life story with. So हर घर की एक कहानी है और वो आपको मदद करेंगी आपकी कहानी लिखने में. So make sure to get in touch with her. 347-449-4242 is her phone number. Taking you to one more track और इसके बाद जैसे मैंने कहा एक छोटा सा commercial break है, ठीक है? कहीं मत जाइएगा. I'll see you on the other side and this is your favorite station, Fanasia.
1: के बारे में वो सब पता है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया. You know you've been my best buddy since forever, right?

0: देखो आप फिर मुझसे पूछते रहते हो कि मार्विन आप ऐसा क्यों कहते हो कि आदमियों के साथ अन्याय होता है। अब ये देखो मैं खुद थोड़ी करता हूँ ऐसी बातें। देखो एक जो पत्नी है ना, पत्नी वो सास की बुराई अपने पति से तो कर सकती है, बट पति अपनी सास की बुराई अपनी पत्नी से नहीं कर सकता। ये मैं नहीं कह रहा बालकों, ये तो इतिहास कह रहा है। वेलकम बैक टू योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो फनी एशिया रेडियो। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 6:24 स्टूडियो की घड़ी में आज फ्राइडे की शाम है। नहीं, फ्राइडे की शाम कहाँ से, आप ना लो मैं मना रहा हूँ तो आप भी मना लो, क्या फर्क पड़ता है, मंडे है यार। वैसे एकदम आपको भी लगा था ना क्या फ्राइडे हो गया। कोई बात नहीं, कभी कभी लॉलीपॉप तो अच्छी लगती है।
1: ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है।
0: चलो भैया पहले तो ये बता दूं कि दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट यू बाय SFL वर्ल्ड वाइड। और ये जो है जी, मैं इनको 20 साल से जानता हूँ। दे आर अ लवली कंपनी एंड दे ब्रिंग सच अ वंडरफुल सॉल्यूशन टू यू गाइस। सॉल्यूशन क्या है, पहले तो आप लोग जो बहाना मारते रहते हो ना, वो दीदी मैं कुछ भेज नहीं सका दिवाली पे ना, हाँ आपको पता ही है दूर कितने रहते हम, है ना। नहीं नहीं बेटा, ये बहाना कैंसिल, क्योंकि SFL वर्ल्ड वाइड है, वो यहाँ से इंडिया, इंडिया से यहाँ, यहाँ से दुनिया के किसी भी कंट्री में, चाहे मबांगवा अफ्रीका में भेज दो, वहाँ भी पहुँच जाएगा आपका सामान। एंड नॉट ओनली यू नो लेटर्स और गिफ्ट्स और द थिंग्स दैट यू लाइक, चाहे यू नो गिफ्ट्स हो, राखी हो, दिवाली हो, ये मिठाइयाँ हो, सब कुछ होता है। इसके अलावा इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दोज बिग मंडप्स फॉर योर मंदिर, उसका पूरा इंतजाम करके देते हैं, एंड टू एंड कस्टम्स तक हैंडल करते हैं। एंड इफ़ यू आर वांटिंग टू ब्रिंग मूव, या लेट्स से यू आर वांटिंग टू मूव योर ओन होल होम, यहाँ से आप मूव कर रहे हैं न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया, आपके सारे घर की चीज़ों को पैक करेंगे, एंड दे विल मेक श्योर दैट दे पैक इट द राइट वे सो यू कैन एक्चुअली इन्जॉय दोज एंड डोंट फाइंड देम ब्रोकन और टूटी। हैं जी, अगर आपका बिजनेस है आपके लिए भी सोल्यूशन है। दे हैव द होल डील विद ट्रांसपोर्ट, यू नो जितने भी ट्रक्स हैं, जितने भी एयरलाइंस हैं, जितने भी ओशन फ्रेट कैरियर्स हैं, दे हैव ग्रेट डील्स विद देम बिकॉज दे हैव बीन डूइंग दिस फॉर 20+ ईयर्स। गिव देम अ कॉल 1-800-691-2335 और विजिट द वेबसाइट विच इज sflworldwide.com। एंड SFL सिंपली स्टैंड फॉर शिप फॉर लेस वर्ल्ड वाइड, मेक श्योर टू चेक दम आउट। अभी मैं इस गाने के बाद करने लगा हूँ जी उस कॉन्टेस्ट को, बिगिन फ्रॉम बरिस्ता हाउस, $20 कुड बी योर्स। कुछ सवाल पूछूंगा, जैसे कि अगर दो बिजली की तारें आपस में प्यार करती हों तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे करंट अफेयर। ऐसे ऐसे कुछ मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपने बताना है कि वो क्या बनते हैं। कब पूछूंगा, इस गाने के बाद।

0: बरा भाई मैं लेके आया हूँ, नहीं मैं लेकर बिरयानी का ऑफर लेके आया हूँ, मतलब बिरयानी आपकी चॉइस है, बिरयानी खाइए या कुछ और खाइए। दिस इज फ्रॉम बिरिस्ता हाउस एंड दे आर द वंस। डेंटन में खूब इन्होंने हल्ला मचाया था, उसके बाद फ्रिस्को में आ चुके हैं, राइट एट द इंटरसेक्शन ऑफ 121 एंड कस्टर। हाँ जी हाँ जी, वो वॉलमार्ट के पास बिल्कुल 6377 कस्टर रोड पे ये लोकेटेड है जी। एंड इंजॉय ऑथेंटिक हैदराबादी बिरयानी, नॉर्थ इंडियन फ्लेवर्स, डिलीशियस डेजर्ट्स एंड दे हैव अ फुल सर्विस बार, ऑल्सो सेटिंग अप टू डू सम ग्रेट इवेंट्स ऑन द वीकेंड्स, तो लुक आउट फॉर दैम। अभी आप क्या जीत सकते हैं जनाब, यू कैन विन $20 का गिफ्ट कूपन विच कैन बी यूज फॉर एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू डाइन इन। याद रखिएगा ये ऑफर टू गो पे नहीं है, तो वहाँ जाके ये ना कहना वो $20 जीता था, ये दो बिरयानी पैक कर दो ना, फिर वो बोलेंगे ये अवेलेबल नहीं है, फिर आप बहस करोगे, तो रहने दो ना उसको। मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ डाइन इन पे अवेलेबल है। दूसरी बात, ये फ्रिस्को में लोकेटेड है, तो जो भी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेगा, सिर्फ इसीलिए नहीं कि मैं चैंपियन हूँ मेरे को आंसर देना है, नहीं भैया, आपको फ्रिस्को जाना है, वहाँ जाके खाना खाना है, एंड देन हमें बताना है कि आपको कैसा लगा। ऑलराइट, सवाल क्या है कि अगर एक लड़की, ठीक है जी, अपने पापा को धक्का मार के गिरा दे, उसको क्या बोलेंगे? एक लड़की अगर अपने पापा को धक्का मार के गिरा दे, पुश कर दे, उसको लड़की को हम क्या बोलेंगे? आपने मुझे बताना है, जो देगा मुझे सही जवाब उसको मैं दूंगा बरिस्ता हाउस की तरफ से एक $20 का गिफ्ट कूपन एब्सोल्युटली फ्री। अब इसमें कंडीशन क्या है कि, चलो कंडीशन छोड़ो यार, इतनी ज्यादा कंडीशन है क्या देनी, लाइफ ने वैसे ही हमारे को कंडीशन दी हुई है। गुड इवनिंग फनेजिया, आपका नाम?
1: मारविन भाई, सिद्धार्थ बोल रहा हूँ।
0: सिद्धार्थ जी कैसन है भाई, सब ठीक है?
1: बढ़िया, एकदम बढ़िया बाटे।
0: सिद्धार्थ भाई बताइए कि इस लड़की को क्या बोलेंगे?
1: पुष्पा।
0: बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है, बिल्कुल पुश कर रही है पापा को, तो पुष्पा ही बोलेंगे। अच्छा चलो एक और बात बताओ फिर, इनाम तो आपका हो गया, फ्रिस्को जाओगे ना?
1: बिल्कुल जाएंगे, फ्रिस्को में रहता हूँ मैं।
0: अच्छा चलो, इनाम तो आपका हो गया, अब एक बात और बताओ कि गांधी जी जो है हमेशा वो नोट पे हंसते क्यों रहते हैं, मुझे बताओ।
1: गांधी जी हमेशा रोड पे हंसते क्यों?
0: नोट नोट नोट यार, नोट नोट
1: नोट पे
0: माल है, माल है, कमाल है। हाँ उसका
1: नहीं, ये वाला नहीं सोच पा।
0: नहीं मालूम ना, कोई बात नहीं। आपने मुझे, बाय द वे, आपने मुझे वापस कॉल करना सिद्धार्थ, ताकि मैं आपकी डिटेल्स ले लूं फॉर द बरिस्ता हाउस $20 कूपन। बट अब मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ पब्लिक से, मजे ले रहा हूँ। पब्लिक गुड इवनिंग, कौन बोल रहा है भाई?
2: हाय मैं प्रियंका बोल रही हूँ।
0: प्रियंका जी आपको तो मैंने डरा ही दिया, कैसी है प्रियंका जी आप?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं अच्छा हूँ, अगर आप प्रियंका चोपड़ा होती तो मैं थोड़ा और अच्छा होता, बट चलो जो है वो भी अच्छा है। प्रियंका जी, ये गांधी जी हमेशा नोट पे हंसते क्यों रहते हैं, क्या प्रॉब्लम है इनकी?
2: सॉरी,
0: गांधी जी जो है, आपने बिल गांधी, गांधी जी समझते हैं, गांधी जी होता है इंडियन नोट है ना, उस पे गांधी जी की फोटो होती है ना, ये गांधी जी हमेशा हंसते क्यों रहते हैं?
2: क्योंकि उनको अच्छा लगता है।
0: क्योंकि उनको अच्छा लगता है, चलो मेरा कोई जवाब बना नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूँ, बट थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट कौन है मेरे साथ, करता हूँ इनसे बात। गुड इवनिंग फनेजिया, हु इज दिस?
3: हेलो, दिस इज फरहान।
0: दिस इज फरहान। फरहान क्या हाल है?
3: बस बढ़िया।
0: फरहान फरहान ये बताओ कि आपकी आवाज फरहान जैसी क्यों नहीं है? फरहान
3: फरहान जैसे नहीं है मेरी।
0: अच्छी आवाज है यार, अच्छी आवाज है। फरहान ये बताओ कि गांधी जी नोट पे हंसते क्यों रहते हैं, व्हाई?
3: अच्छा क्वेश्चन चेंज हो गया।
0: दुनिया हसीनों का मेला, मतलब समझ सवाल भी ऐसी दुनिया में चलने चाहिए, एक से दूसरा, दूसरे तीसरा।
3: गांधी जी नहीं, नहीं पता,
0: नहीं पता, सोचते रहिए सोचते रहिए। कौन बोल रहा है? गुड इवनिंग फनेजिया, हू इज दिस? हेलो हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते हैं तो कोई बात नहीं, डब्बे ट्रेन में बहुत हैं, दूसरे में घुस जाऊंगा। गुड इवनिंग फनेजिया। हेलो हेलो हेलो सर, आप क्या मुझे सुन सकते हैं सर या मैम? अरे लगता है आवाज ही नहीं आ रहा है, कॉल ही कर गए हैं। कोई बात नहीं, मैं एक दो कॉल्स और लेता हूँ। वैसे इंटरेस्टिंग है कि गांधी जी हमेशा नोट पे हंसते क्यों रहते हैं भैया। गुड इवनिंग फनेजिया, हू इज दिस?
4: हाय, दिस इज सारा।
0: सारा हाउ आर यू?
4: आई एम गुड, आप कैसे हैं?
0: मैं अच्छा हूँ, बस थोड़ा कम है मेरे पास, सारा नहीं है।
4: ठीक है, आंसर इज पुष्पा।
0: पुष्पा तो चला गया, एक सवाल और पूछा था मैंने कि गांधी जी जो, गांधी जी नोट पे होते हैं हमारे, वो हंसते क्यों रहते हैं? कोई बात नहीं सारा,
4: आई एम नॉट
0: What do you think it is? If you're not sure, it's fine.
4: To release stress.
0: Oh, yaar, वैसे इस बात को किसी ने सोचा नहीं कि गांधी जी को स्ट्रेस भी तो होगा, वो रिलीज करना चाहते होंगे. लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बंदे से मैं बात करूंगा या बंदी से. गुड इवनिंग फनीजा.
5: हेलो.
0: हाय, व्हाट्स योर नेम?
5: हाय, माय नेम इज सोनिया.
0: हाय सोनिया, टेल मी, डू यू नो व्हाई गांधी जी इज ऑलवेज लाफिंग स्माइलिंग ऑन द नोट?
5: मे बी बिकॉज उनके पास पैसे होते हैं, लाइक वो नोट पर ही होते हैं ना.
0: यार बात आपकी ठीक है, बट मैं बताऊं क्या होता है. सारे सुन रहे हैं, बेचारे कह रहे हैं, मारवीन जी क्या तुमने लगा रखा है, गांधी जी नोट पे हंसते क्यों नहीं है, गांधी जी नोट पे हंसते क्यों नहीं है. सोनिया जी बात ऐसी है कि अगर गांधी जी नोट पे हंसने लग पड़ेंगे तो नोट गीला हो जाएगा ना यार.

0: चका चक चका चक चका चक यार कितना वैसे भी देखो आपके, यू नो आई नो आई नो आई नो, चप्पल वगैरह बाद में उतारना लेडीज, मेरे मजाक थोड़े डिफरेंट होते हैं यार, अच्छे लगते हैं ना, हंसी मजाक का सफर है यार, चलते रहना चाहिए। अब देखो आप लोग भी तो कितना ट्रैवल करते हो, कितना ट्रैवल करते हो, और ट्रैवल करते हो अगर जब हस्बैंड एंड वाइफ तो वो ट्रैवल तो करते हो, बट वो हिंदी में ट्रैवल ज़्यादा लगता है सफ़र वाला ना वो। अब मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, आप दोनों का प्यार ही इतना है आपस में, बरकरार रहे ये प्यार, यही मेरी दुआ है। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद आ रहा हूँ जी विद द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस इवनिंग ड्राइव टाइम शो, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM।
1: ये तारा वो तारा हर तारा।
2: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
3: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
4: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
5: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
6: डील कहाँ?
5: सिंपल, पास्या पे। इंट्रोड्यूसिंग पास्या, डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
2: डाउनलोड पास्या, दैट्स PASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है।
7: अगर मैं कहूँ तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल 300 है और ब्लड प्रेशर 160 तो क्या कहोगे?
5: क्या?
8: ड्रीम में रियलिटी चेक अक्सर डर बीमारी का नहीं उसके पकड़े जाने का होता है, लेकिन व्हाट इफ में मत अटके, एनुअल चेकअप करवाइए।
2: विजिट एलन इंटरनल मेडिसिन एंड ट्रस्ट डॉक्टर वनीता एंड हर टीम फॉर एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग्स एंड वेट मैनेजमेंट। न्यू पेशेंट्स विद सेम डे अपॉइंटमेंट्स वेलकम। कॉल 4696499995 और विजिट aimallen.com।
9: Stop! Festive fashion check. Navratri ke outfits ready hai?
10: Do chaniya choli hai. Mix and match kar lungi.
9: Fashion violation. Same outfit ko 9 raat overtime.
10: To solution?
2: Indian ethnic wear by Jyotika Patel. Explore a stunning collection of stylish, contemporary chaniya cholis for a new look every day in Navratri. Planning a wedding? Discover quality wedding and customized bridal wear for men and women at great prices. Call 945-444-2194 or explore jyotikapateldesigns.com. Indian ethnic wear by Jyotika Patel. Designed for celebrations.
11: जहाँ तंदूर की आंच घर जैसी गर्माहट और अपनों का साथ सब एक ही मेज पर मिल जाए, अब वही पंजाब अपने दमदार स्वाद और दिल से की गई मेहमान नवाजी के साथ अरविंग में।

0: पंजाब बाय पेज थ्री नाउ इन इरविन. स्वाद पंजाब का अंदाज पेज थ्री का.
1: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.

0: Stop. Start.
1: ठुमक ठुमक ठुमक ठुमक करते हुए अगर कमर कहीं टाऊ कर गई, आह करके आवाज निकल आई, आपके गोड्डे कड़कड़ करते हैं और आपकी माँ कहती रहती है बेटा मेरी तो पेट ही अकड़ जाती है, तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स के लिए ना वो पेन किलर नहीं उठानी, ये नहीं करना कि आईबीप्रोफेन की दो गोलियां ठुकवा दीजिए, टायलेनॉल दे दिया, ना ना ना, ऐसा कोई काम नहीं करना। नेचुरल रेमेडी है, नेचुरल सॉल्यूशंस अवेलेबल है, एंड दैट इज विद टेक्सास स्टार रिहैब। द वेबसाइट इज ऑल्सो एज द नेम सजेस्ट, texasstarrehab.com. आई पर्सनली हैव बीन देयर, ही इज द गाय हु गॉट मी बैक टू माई फीट आफ्टर आई हैड अ हिप रिप्लेसमेंट अ कपल ऑफ इयर्स अगो, एंड समबडी हु हैज डेडिकेटेड हिज लाइफ टू फिजियोथेरेपी, हिज नेम इज Rushi, and Rushi is the practitioner that runs this practice. अच्छी बात यह है कि पर्सनल अटेंशन आपको मिलती है, एवरी पेशेंट गेट्स दैट पर्सनल अटेंशन, एंड यू कैन बी क्योर्ड ऑफ योर पेन्स विद द राइट एक्सरसाइजेस एंड द राइट न्यूट्रिशन, विच इज वॉट ही इज एक्सपर्ट एट, एंड ही इज इवन क्वालिफाइड इनफ कि वो मुंबई इंडियन न्यूयॉर्क जो MLC की क्रिकेट टीम है उनके सारे प्लेयर्स के फिजियोथेरेपिस्ट यही हैं। इवन सचिन तेंदुलकर हैज़ ट्रस्टेड हिम विद एडजस्टमेंट्स ऑन हिज बॉडी, एंड इवन शोएब अख्तर, बाकी अमेरिकन प्लेयर्स का तो करते ही हैं। सो इफ यू are feeling that you have some joint issues, you have some pain in your body and you are on painkillers, my suggestion, don't do that. Take them to Texas Star Rehab. Two locations to serve you. One is in Irving. The other one is in the heart of Frisco.

0: फनी एशिया इज लाइक अ रिलेटिव राइट यार, हम रिश्तेदारों की तरह ही तो हैं आपके लिए, मतलब जहां जहां आप जाते हो हम आपके साथ साथ चलते हैं, बस हम वो रिश्तेदार नहीं हैं हम जो कहते हैं हाँ दाल मखनी में ना नमक कम था, शादी तो बड़ी अच्छी हुई, वो वाले रिश्तेदार हम नहीं है भैया, पर हम आपके रिलेटिव जरूर हैं और आपके लिए लेके आए एक सोल्यूशन स्पेशली फॉर द बिजनेस ओनर्स विच इज कॉल्ड रिलेटिव मीडिया एंड दिस इज ब्रॉट यू बाय फन एशिया नेटवर्क। एक मीडिया एक्सपर्टीज है इन योर सोशल मीडिया, आज जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इफ यू डोंट यूज द राइट एल्गोरिथम्स, इफ यू डोंट यूज द राइट वर्डिंग, इफ यू डोंट यूज द राइट फेंसिंग, इट इज ऑफ नो यूज, आपके पैसे का जो पोटेंशियल है वो पूरा यूज नहीं हो पाता। विद रिलेटिव मीडिया फ्रॉम एंगेजिंग रील्स एंड ग्राफिक्स टू कैप्शंस कॉन्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ एम्पलीफाई किया जाता है विद फन एशिया रेडियोज नेटवर्क डिजिटल एंड कम्युनिटी प्लेटफॉर्म। रिलेटिव मीडिया गिव्स योर ब्रांड अ कंप्लीट कॉन्टेंट सोल्यूशन। तो अगर आप तंग आ चुके हैं अपने बक्स को ना काम करते हुए देख के, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं एंड इवन टू एडवर्टाइज ऑन फन एशियाज नेटवर्क यू कैन गिव मी अ कॉल। फन एशिया के नेटवर्क में क्या क्या आता है, ऑफ कोर्स फन एशिया 104.9 एफएम, देन आर तेलुगु स्टेशन व्हिच इज संगम, आर तमिल स्टेशन व्हिच इज वणकम, एंड देन ऑफ कोर्स आर पंजाबी स्टेशन अपना पंजाब। सो इफ यू वांट टू रीच द मासेस देन आई एम योर गाय। 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है जी मेरा रेडियो मीडिया में। माय फोन नंबर इज 9723027012, दैट्स 972-302-7012, 972-302-7012। या फिर अगर आप गूगल में जाके टाइप करेंगे ना मारविन दास फोन नंबर मिल जाएगा, इसीलिए तो पंगा नहीं ले सकता ना मैं कोई, कहीं अगर मैं इधर उधर कोई ऐसे काम में फंस गया तो आप लोग तो मेरा पटाखा बजा देंगे यार, इसलिए भैया ना गलत काम करो ना करने दो। टुडे इज द डे व्हेन द जेम्स बॉन्ड एज वी नो इट, पहली जेम्स बॉन्ड मूवी मालूम है आपको, नहीं मालूम है ना, उसका नाम था डॉक्टर नो एंड दिस इज द ट्रेलर।
1: Bond. James Bond. If you carry a 00 number, it means you're licensed to kill, not get killed.
2: Welcome to Jamaica, Mr. Bond.
3: News of my arrival leaked.
4: Who are you working for?
2: We didn't advertise it.
3: What else do we know about this Chinese gentleman?
2: Nothing except his name, Dr. No.
5: I'm a member of Spectre.
6: World domination. Same old dream.
4: Why is he still alive?
7: Our attempts failed.
4: We're not going to fail again.
6: I thought you'd turn up sooner or later.
2: Very clever, Mr. Bond.
0: The screen saw Sean Connery roll up as James Bond for the very first time. The dialogue, the epic dialogue, "My name is Bond, James Bond," was first heard in this movie that was called Dr. No, and that was in the year 1962. It was a novel actually by Ian Fleming, and uske baad Sean Connery was the lead actor there with Ursula Andress as the lead actress. London mein iska premiere hua tha, and that was none other than the 5th of October as the date. The year was 1962. You are listening to Your Evening Drive Time Show. One more thing from history that I want to share with you is this song, which was Love Me Do, and that was by the Beatles. And this was the song that was first recorded on today's date. Once again, 5th of October, the date, the year was 1962.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
4: Call 857-891-8942 today.
5: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
6: लिया.
5: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
6: नहीं आया.
5: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
7: Visit www.senadainc.com today.
8: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है.
9: कितनी लंबी लिस्ट है?
8: बस दो पेजेस. इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी.
9: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो. SFL Worldwide है ना, इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं. पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है.
10: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide. शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्ड वाइड. विजिट SFLWorldwide.com.
11: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
12: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
13: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
9: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
14: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
9: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
14: Papri chaat se malpua rabri tak, har dish mein mile zindagi ke flavors ka asli swaad. Visit their new website or download the Flavor Lounge app for exclusive deals. The Flavor Lounge, har bhai super hit.
15: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
16: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
17: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
18: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
17: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
19: Want to explore properties in India? You don't need to fly to India. The Gruh Pravesh India Property Expo is coming to Frisco. Meet top developers from Bengaluru.